0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो
1: प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे तीना नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। पिछले फरवरी में दक्षिण अफ्रीका के बाद अब मॉरिशस ने नामीबिया से मवेशियों के आयात के परमिट निलंबित कर दिए हैं। ये फैसला डिवीजन दे सर्विस वेटरिनेर DVS ने लिया है। ये कदम खारास क्षेत्र के कारसबर्ग में कमर्शियल फार्म में फूड एंड माउथ बीमारी के एक मामले की पुष्टि होने के बाद उठाया गया। मंत्रिमंडल ने ये जायजा लिया कि 31 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने मॉरिशस और अमेरिका के साथ मिलकर 22 मई 2025 को हुए शागस द्वीप समूह समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए सहयोग का भरोसा दिया। और मंत्रिमंडल ने यह भी नोट किया कि 22 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने इस समझौते का विरोध दोहराया। बैठक के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सभी पक्षों को मंजूर होने वाला समाधान तलाशने की प्रतिबद्धता जताई। और न्यूयॉर्क में मौजूद विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कल अपने ब्रिटिश समकक्ष एड मिलीबान से मुलाकात की और एड मिलीबान ने एक बार फिर ब्रिटिश सरकार की इस इच्छा को दोहराया कि ऐसा हल निकाला जाए जो तीनों पक्षों मॉरिशस यूके और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काबिले तारीफ हो। और मॉरिशस की सरकार के मुताबिक शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। विदेश में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शिखर बैठक का मुख्य मुद्दा दोनों देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा रहा। चीन का मानना है कि अमेरिका उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा है, खासकर व्यापार, टेक्नोलॉजी और ताइवान के मामलों में। अंत में मौसम का हाल। कम दबाव वाली हवाओं के असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। पूर्वानुमान आज सुबह और दोपहर के समय बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर देश के दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर। और रात्रि के समय भी बादल छाए रहेंगे और ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा होगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो हल्की एवं सामान्य रहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। सूर्योदय आज 5:56 पर और सूर्यास्त शाम के 6:06 पर।
2: You're listening to RM3 Radio, Mana.

0: ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मग़फ़िरत तलब करते हैं। हम अपने नफ्स के शर से और बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। सामिन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। ये मनोरंजन रेडियो की उर्दू नशरियात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीनाज जान अली। सबा अल खैर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज की इस महफिल हमदोनात को हमने अहादीस के गुलदस्ते से सजाया है। आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, रश्क के काबिल तो वही आदमी है, एक वो जिसे अल्लाह ने कुरान की नेमत दी और वो उसकी तिलावत रात दिन करता रहता है, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ने माल दिया हो और वो उसे रात दिन अल्लाह की राह में खर्च करता रहता है।
1: बिस्मिल

जब आदमी गुनाह तर्क करने का इरादा कर लेता है तो अल्लाह पाक की इमदाद हर तरफ से उसकी मददगार होती है। बेशक अल्लाह ही बड़ा रिस्क देने वाला, ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला है।

या अल्लाह हमें कभी भी हालात में, मुश्किलों में, परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी तन्हा मत छोड़ना, हमेशा अपनी रहमत के साए में रखना, हमेशा अपनी मोहब्बत की निगाह से देखना, हमारे गुनाहों को माफ़ कर हमारे मौला ऐसे बना देना कि हम आपको पसंद आ जाएं। आमीन आमीन या

जो जबान दरूद शरीफ में मसरूफ रहती है वो जबान गीबत शिकायत और नाशुक्री से पाक होती है। बुखारी व मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, चुगलखोर जन्नत में न जाएगा। सूरह अल-बकरा उर्दू तर्जुमा, तबाही और बर्बादी है उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढने और लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां करता है।

सही अल बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके वालिदैन, औलाद और दुनिया के हर इंसान से बढ़कर महबूब न हो जाऊं। तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार मदीना राहत कल्ब सीना ने फरमाया, सुन लो, मैं अल्लाह का हबीब महबूब हूँ और उस पर मुझे कोई फख्र यानी कोई घमंड नहीं है। सामईन कराम, उम्मीद है आज के इस प्रोग्राम से आप महजूज हुए। आपकी तवज्जो के लिए हम नहायत शुक्रगुजार हैं। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। सुभानक अल्लाहुम्म बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।

0: continuous music. RM3.
1: ब्रेकअप एक जन केवी रीते नक्की करी शके

भक्ति में शक्ति। प्रिय श्रोताओं, सादर अभिवादन। श्रोताओं, हमारी संस्कृति में विभिन्न कालों में अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं। कोई भी विशेष पर्व संबंधित काल की परिस्थितियों से संबद्ध होता है। उस पर्व की पृष्ठभूमि से हम परिचित होते हैं तथा उसकी प्रासंगिकता व सार्थकता पर हम विचार भी करते हैं। परंतु पर्व कोई भी हो, प्रथम पूजनीय गणपति की अर्चना द्वारा ही हम शुभारंभ करते हैं।

श्रोताओ, आज महालय का आरंभ चल रहा है। महालय हिंदू पंचांग के अनुसार एक बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है, जो पितृपक्ष की समाप्ति और देवी पक्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह विशेष दिन मुख्य रूप से भारत में पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा जैसे राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के रूप में भी माना जाता है।

श्रोताओं, महालय के अलग अलग सोपान होते हैं, जैसे पितृपक्ष का समापन और तर्पण भी इसमें आता है। महालय का दिन अपने पूर्वजों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का दिन होता है। इस दिन सुबह सवेरे लोग नदियां या अपने घरों में पवित्र जल, तेल और कुश के साथ तर्पण करते हैं तथा मृत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं, और यह प्रथा मॉरिशस में भी बहुत प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि इन अनुष्ठानों को करने से पूर्वज तृप्त होकर अपने लोक लौट जाते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। हम जानते हैं कि शास्त्रों में मानव को अपने जीवन में तीन ऋणों से उऋण होने के लिए बताया गया है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण से उऋण होने के लिए श्राद्ध, कर्म, तर्पण आदि विधि बताई गई है। कहते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनके ऋण को उतारने के लिए उनके मृत्यु के बाद उनके लिए निकाला हुआ दान ही पितृदान कहलाता है, क्योंकि पितृगण देवताओं की तरह सहायक होते हैं और वे अपने पुत्रों द्वारा दान करने पर अधिक से अधिक पुण्य प्रदान करते हैं। श्रोताओं, कहते हैं जहाँ पितरों के प्रति सम्मानजनक कार्य नहीं होता है वहाँ दुख, रोग, क्लेश, मलिनता, दरिद्रता का वास होता है। अतः पितृ कर्म करना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि पूर्वज अपने वंशजों को श्रेष्ठ और उच्च अवस्था में देखकर प्रसन्न होते हैं।

दूसरे सोपान में हम माँ देवी दुर्गा का आगमन पाते हैं। महालय के साथ ही देवी पक्ष की आधिकारिक शुरुआत हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ दुर्गा धरती लोक पर आगमन के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत और माँ दुर्गा के पृथ्वी पर धरतीवासियों को आशीर्वाद देने के पहले चरण के रूप में देखा जाता है। हमारे देश में तो नवरात्रि के समय में बड़े धूमधाम से श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ माँ का आह्वान किया जाता है।

साधारण सी बात है, जब भी कोई बालक जन्म लेता है तो उसके रोने की आवाज सुनकर सब खुशी मनाते हैं। भक्त कबीर ने कितने गहराई से सोचा होगा इस बात को, जो इतना बड़ा संदेश मानव जाति को दे दिया।

को एक चादर के समान समझते हुए भक्त कबीर ने लिखा है, चदरिया झीनी रे झीनी, ये शरीर रूपी चादर किस प्रकार बनी, कैसे इस चादर का निर्माण हुआ,

जब मोरी चादर बन घर आई रंगरेज को दीनी। रंगरेज कौन? गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया।

गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद ये जीवन आरंभ होता है, और ऐसे समय पर एक चेतावनी

श्रोताओं, इसके अंतर्गत यह भी देखा जाता है कि भारत की बंगाली संस्कृति में महालय की सुबह का एक अलग ही ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन सुबह भोर में लगभग 4 बजे लोग रेडियो हो या फिर अन्य माध्यमों द्वारा महिषासुर मर्दिनी का पाठ सुनते हैं। स्वरबद्ध किए गए चंडीपाद और देवी के भजनों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है।

श्रोताओं, सांस्कृतिक रूप से महालय को भारत के सबसे बड़े उत्सव दुर्गा पूजा के आगमन की पूर्व सूचना या प्रथम सुगबुगाहट माना जाता है। इसी दिन मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की आंखें बनाने का अंतिम कार्य पूरा करते हैं, जिसे चक्षुदान कहा जाता है। इस प्रकार महालय शोक या विसर्जन से खुशी और उत्सव की ओर बढ़ने का एक बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक से

周末愉快，听众朋友大家好，今日由我张大伟继续为大家送上好听的音乐，希望这些选曲可以更加符合你们此刻的心情。

有时有些答案需要一些时间才会慢慢浮现出来。

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से। टीना, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। पिछले फरवरी में दक्षिण अफ्रीका के बाद अब मॉरिशस ने नामीबिया में से मवेशियों के आयात के परमिट निलंबित कर दिए हैं। ये फैसला डिवीजन दे सर्विस वेटरिनेर DVS ने लिया है। ये कदम करास क्षेत्र के करासबर्ग में कमर्शियल फार्म में फुट एंड माउथ बीमारी के मामले की पुष्टि होने के बाद उठाया गया। बीमारी के संदिग्ध लक्षण वाले 11 मवेशियों में से 10 के 23 सितंबर को किए गए परीक्षण पॉजिटिव आए। अब केन्या ही एकमात्र ऐसा देश रह गया है जिसे DVS ने जीवित मवेशियों के आयात की अनुमति दी है। मंत्रिमंडल ने यह जायजा लिया कि 21 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से फोन पर बातचीत की। उन्होंने मॉरिशस और अमेरिका के साथ मिलकर 22 मई 2025 को हुए शागस द्वीप समूह समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए सहयोग का भरोसा दिया। मंत्रिमंडल ने यह भी नोट किया कि 22 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने इस समझौते का विरोध दोहराया। बैठक के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सभी पक्षों को मंजूर होने वाला समाधान तलाशने की प्रतिबद्धता जताई। न्यूयॉर्क में मौजूद विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कल अपने ब्रिटिश समकक्ष एड मिलिबान से मुलाकात की। एड मिलिबान ने एक बार फिर ब्रिटिश सरकार की इस इच्छा को दोहराया कि ऐसा समाधान निकाला जाए जो तीनों पक्षों मॉरिशस, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए स्वीकार्य हो। मॉरिशस की सरकार के मुताबिक शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने फिलिस्तीन के मुद्दे की शांतिपूर्ण समाधान और दो राज्य समाधान को लागू करने से संबंधित उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मॉरिशस की ओर से बयान दिया। कृषि उद्योग से जुड़ी संस्थाओं के जिम्मेदार अधिकारी कल वेजवी में एक बैठक में जुटे। पहली प्रबंधन बैठक के 8 महीने बाद अब मंत्री अरविंद बुलेल कार्यक्रमों की निगरानी को और ठोस बनाना चाहते हैं। इसके तहत लक्ष्य तय किए जाएंगे, काम की प्रगति को मापा जाएगा और हासिल होने वाले नतीजों पर नजर रखी जाएगी। ये तरीका परफॉर्मेंस बेस्ड बजट 2026-2027 के तहत अपनाया जा रहा है। और विदेश में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीफे इंसाफ ने देशव्यापी प्रदर्शन और इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया है। इस मार्च को रोकने के लिए प्रशासन ने राजधानी इस्लामाबाद में कड़े सुरक्षा इंतजाम करते हुए शहर को लगभग पूरी तरह से सील कर दिया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। कांपोहान पस्त फ्लाक में 33 साल के 33 years old के श्री प्रवीण बोहला जो ब्लैक नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनकी बहन श्रीमती पूनम बोहला के घर कांपोहान पस्त फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए काटकुकु की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टूडे 3 PM कालीमाई रोड बाउलो में 49 साल के 49 years old के श्री उमाशंकर मंगाव जो विशाल नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी

0: उनकी मां श्रीमती ललिता मोंगा के घर काली माई रोड बौलू से उठाकर बौलू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी और समय के बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। कौन पोर अन बस द फ्लैग मी, कौन पोर अन बस द फ्लैग मी, वैसे ये शोक समाचार हमने पढ़ लिया है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। 33 साल के श्री प्रवीण बोहोला, जो ब्लैक नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सपहर 3 बजे, आज सपहर 3 बजे उनकी बहन श्रीमती पूनम बोहोला के घर कौपोहन फ्राक से उठा घर अंतिम संस्कार के लिए कातकुकु की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: घड़ी मिलाते चलिए, दिन के 12:05 हुए हैं।
5: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
4: हेलो सभी प्रियजनों को नमस्कार और आदाब। सत्यते का दिन है 26 सितंबर 2026, और हम आशा करते हैं कि आप सब जो हैं जकास हैं। अगर ठीक भी नहीं है तो कोई बात नहीं, फटाफट हमारे रेडियो चैनल अर्थात रेडियो मनोरंजन से जुड़ जाए, क्योंकि आप लोगों की प्यारी सखी अनीता यहाँ पर हाजिर है आप लोगों का साथ देने के लिए। और जैसे जैसे हम अपने ज़बरदस्त गानों का पिटारा खोलेंगे तो ऑफकोर्स आप यादों की बारिश में भीग कर खुद ब खुद मुस्कुराने लगेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम सुहाना सफर की शुरुआत करते हैं। फिल्म दिलों की दास्ता, चलिए प्यारा सा गाना आप एंजॉय कीजिए।

0: सुहाना सफर
1: जी। दोस्तों लता जी और सुरेश वाडकर जी की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है हमरा ही मेरे हमरा ही। दोनों की आवाजों के प्रति एक अद्भुत खिंचाव आभास होता है ना। वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ 80s, बहुत ही प्राकृतिक आवाज जी। दोस्तों तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज है बॉलीवुड के जो हैं बॉलीवुड के अनेक ऐसे सितारे हैं कलाकार हैं जिनका आज जन्मदिन है, जैसे देवानंद साहब, ट्वेंकी पांडे, अर्चना पूरन सिंह आदि। तो आइए हम देवानंद साहब पर आधारित एक खूबसूरत गाने का रसास्वादन करते हैं।

0: खाना सफर खाना सफर
1: जी दोस्तों, देवानंद साहब और उनका असली नाम है धर्मदेव पिशोरी मल आनंद। उनका जन्म जो है

26 सितंबर 1930 में हुआ था और उनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 में हुई थी। वे एक हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक थे। देवानंद साहब को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि 6 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। देवानंद साहब जो है 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए शामिल हैं। और भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के 3rd सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था। जी दोस्तों, कई लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं और शीला जी बुनवें ऐसे साथ दे रही है और कह रही है कि आपसे बात कर लूँगी तब जाकर घर के काम काज करूँगी, तो इसके लिए धन्यवाद जी। और आप कहती है कि आप फिल्म शारगिर का गाना सुनना चाह रही है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, और यही गाना जाएगा पूरे मकुना परिवार के नाम, और जो भी लोग आज गोविंदन जा रहे हैं तो उनके नाम यह गाना जाता है।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, मौत अलबिया से मालिनी जी भी साथ दे रही हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म शादी से पहले ऑफ कोर्स मोहम्मद रफ़ी साहब की ब्यूटीफुल आवाज़ में ये सुर्ख जोड़ा और यही गाना जाएगा आपकी बेटी छाया के नाम, साथ ही साथ पतिदेव इंद्रजीत के नाम और सभी सुनने वालों के नाम।

जी दोस्तों, यहाँ पर 12:30 बजे हुए हैं और सना से वीना जी साथ दे रही है और आप सुनना चाह रही है फिल्म वक्त का गाना। लेकिन वक्त में हमें यही गाना मिला, जो गाना आपने मांगा है वो नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो यह गाना जाएगा पूरे नंदू परिवार के नाम और साथ ही साथ आपकी प्यारी बहन गीता के नाम, जिनसे आप बहुत प्यार करती हैं।

जी दोस्तों, ओल्ड स्पेस हॉस्ट्रे बुशे से मनोज सोहन जी साथ दे रहे हैं। और आप कहते हैं कि आप फिल्म मुकद्दर का सिकंदर वाला गाना आप सुनना चाह रहे हैं कुमार, क्षमा कीजिए किशोर कुमार की आवाज़ में। और यह गाना आपकी प्यारी पत्नी नजीमा के नाम, गैसिंग आश्रम के जितने भी बुजुर्ग हैं उनके नाम, साथ ही साथ जो लोग अभी अस्पताल में हैं, बीमार हैं, उनके नाम जो आएगा।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, सुहाना सफर कार्यक्रम चल रहा है 5250-6200 पर, आपके डेडिकेशंस या 4028070 पर आपके मैसेज फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। और बिल्कुल दोस्तों, हम तो इस दुनिया में मेहमान हैं, आते हैं, अपना कर्म करते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन वही सिकंदर कहलाता है जो इस दुनिया को जीत लेता है, और वो भी कैसे, जब हम दूसरों की यादों में, दूसरों की मेमोरीज़ में जो हैं याद बनकर, अच्छे मेमोरीज़ बनकर रहते हैं, अपने कर्मों से हम उनके दिलों में छा जाते हैं, तब हम दुनिया को जीत लेते हैं और अमर बन जाते हैं। तो ऑफ कोर्स हमेशा अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, यही कामना है। और यहाँ पर माधुरी जी ने एक प्यारा सा मैसेज भेजा है। आप कहती हैं, हेलो जी लवली लेडी। हेलो जी, थैंक यू, हैप्पी सैटरडे, वी लव सेम टू यू। और आपकी फरमाइश है फिल्म मेरे सजना का गाना, बहुत ही प्यारा गाना है, वन ऑफ माय फेवरेट, और यही गाना जाएगा परी के नाम। साथ ही साथ किरणपुरी जी हमेशा जो हैं जुड़े रहते हैं कनाडा से, सात समुंदर पार, थैंक यू इसके लिए जी। और आप कहते हैं, हम भी रेडियो आरएम फ्री के बीमार हैं, रोगी हैं, ओके, तो थैंक यू इसके लिए। तो चलिए, आपके नाम जो आएगा ये अगला गाना, जे जे लाल, नरेंद्र कुमार निंडी, कालाराम कारीगर ऑफ कनाडा। तो चलिए, आप सबों के नाम यहाँ प्यारा सा गाना, मैंने कुछ खोया है।
2: मैंने कुछ खोया है,

वेल दोस्तों, मौका से सुदेवी जी साथ दे रही हैं और अगला गाना आप अपनी नातिन चस्का, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, चस्का डिफरेंट है ना, उनके नाम करना चाह रही है फिल्म राजा का गाना, साथ ही साथ पतिदेव है राज, तो चलिए यह गाना आप लोगों के नाम एंजॉय इट।

वेल दोस्तों, किरणपुरी जी थैंक्स कह रहे हैं, उन्हें मैंने कुछ खोया वाला गाना बहुत पसंद आया और वे कहते हैं कि वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम माय कॉलेज डेज। तो थैंक यू कि आपको यह गाना पसंद आया। और अभी जो है गाँव से श्यामा जी साथ दे रही है और आपने फिल्म गैम्बलर का गाना मांगा है, चूँकि आज देवानंद जी साहब का जन्मदिन है तो आप उन्हीं पर आधारित एक गाना सुनना चाह रही हैं। और यह गाना जाएगा पूरे परिवार के नाम, साथ ही साथ भाई जयप्रकाश हैं, भाभी नम्रता हैं, नेफ्यूज़ हैं केशव, युधिश, साथ ही साथ आपकी सहेलियां हैं, वो है नंदिनी ओकलू, वीना रामफल और विश्वानी दुखी जी, और साथ ही साथ आपकी प्यारी बहना, खासकर प्यारी छोटी बहना विजयंती के नाम यह गाना जाएगा। और जो आपकी बहना है वो आजकल आपकी यहाँ ठहर रही है एंड यू बोथ आर चेरिशिंग पुरानी यादें, जो है चेरिश कर रही है, पुरानी यादों को ताज़ा आप लोग कर रही है। बेशक कीजिए, ये मोमेंट्स फिर से नहीं आएंगे एंड यू हैव टू लीव योर लाइफ फुली। बहनों के साथ कब समय बीत जाए यहाँ पता ही नहीं चलता है, तो हम कहेंगे हैव नाइस टाइम टुगेदर एंड आपके नाम यहाँ प्यारा गाना।

जी दोस्तों, त्रियोले से कल्याणी जी साथ दे रही हैं फिल्म लव स्टोरी का गाना। आपकी चार बेटियों के नाम श्वेता, हर्षिना, श्रेष्ठा, नितिशा, पति विघंट होता, नातिन जियान, शिवांश, दुआऊ परिवार के नाम। और इसी गाने के साथ हम भरेंगे 1 बजे के समाचारों की ओर।

0: दोपहर के एक बज रहे हैं, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मॉरिशस ने छोटे टापू देशों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार और नई तकनीकों पर बात की। उन्होंने फिलिस्तीन शागस और ट्रम्बलिन का मुद्दा भी उठाया। अपनी आगामी ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम विदेश ब्रिटिश प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रोनाटो पावेल से मिलेंगे। बातचीत में शागस समझौते की पुष्टि से जुड़े हाल के घटनाक्रम पर चर्चा होगी। ये जानकारी कल कैबिनेट के फैसलों में दी गई। प्रधानमंत्री ने 21 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से फोन पर बात की थी। शागस समझौते पर 22 मई 2025 को हस्ताक्षर हुए थे। इसकी पुष्टि के लिए ब्रिटिश संसद में एक बिल पारित होना जरूरी था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को लेकर आपत्ति जताई। न्यूयॉर्क में ब्रिटिश विदेश मंत्री एड मिलिबैंड से मुलाकात के बाद धनंजय रामफल ने कहा कि ब्रिटेन, मॉरिशस और अमेरिका तीनों के लिए स्वीकार्य समाधान तलाशने की इच्छा ब्रिटिश सरकार ने दोहराई है। मॉरिशस सरकार के अनुसार शागस पर मॉरिशस की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं है। अब पशुओं के आयात से जुड़ी ये खबर। नामीबिया में फुट एंड माउथ डिजीज रोग का मामला सामने आने के बाद मॉरिशस ने वहां से मवेशियों का आयात रोक दिया है। कारसबर्ग के एक व्यावसायिक फार्म में जिन 11 मवेशियों में बीमारी के लक्षण थे उनमें से 10 की जांच 23 सितंबर को पॉजिटिव आई है। दक्षिण अफ्रीका के बाद नामीबिया दूसरा देश है जहाँ से मवेशियों के आयात के परमिट निलंबित किए गए हैं। विदेश में फेसबुक की मालिक कंपनी मीटा को अमेरिका में एक और कानूनी झटका लगा है। न्यू मैक्सिको में एक जूरी ने माना है कि फेसबुक ने लोगों को उनके निजी डेटा के इस्तेमाल के बारे में गुमराह किया था। ये मामला कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद से जुड़ा है। 2018 में सामने आए इस विवाद ने दिखाया था कि फेसबुक के करोड़ों उपयोगकर्ताओं का डेटा उनकी जानकारी के बिना राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. सुहाना सफर।
5: जी दोस्तों, सुहाना सफर कार्यक्रम चल रहा है रेडियो मनोरंजन पर और यहाँ पर 1:03 हो चुके हैं। 1 घंटा जा चुका है, सिर्फ 1 घंटा बाकी है। सो यहाँ पर चलिए आपके मैसेजेस को देखते हैं। यहाँ पर जो है अनीता जी फिकम फ्लैग से साथ दे रही हैं और आप कहती है गुड आफ्टरनून, वेरी स्वीट सॉन्ग हमेशा की तरह, थैंक यू जी। और आप कहती है कि आज पूर्णिमा है, प्लीज़ प्ले वन सॉन्ग फ्रॉम फिल्म पाकीज़ा चलो दिरदा चलो। तो चलिए यह गाना आपके नाम, आपके पति राज के नाम, बेटे अंकुश हैं, अंतिश हैं, बहू अशिमा है, मनीषा है, पोती हिमेशा है, आध्या है और छोटे लड्डू गोपाल के नाम यह गाना चल पड़ा।

जी दोस्तों, हम भी आपके लिए ऐसे ऐसे गाने चला रहे हैं और आपकी पसंद के गाने हैं जो आपको इस दुनिया से पार ले चले और यादों की दुनिया में ले जाएंगे। और यहाँ पर निर्मला जी जो हैं फ्लैक्स से साथ दे रही हैं और आप कहती है कि आपके बेटे का जन्मदिन है आज, तो हम आपके बेटे को ज़रूर कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन यहाँ पर बेटे का नाम नहीं है, फिर भी हम यही विश करते हैं कि आपका जो बेटा है वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, तरक्की करे। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू।

दोस्तों, दिल के तारों को जोड़ा नहीं जाता है, ये तो यूं ही अपने आप जुड़ जाते हैं। माना कि अपनों के बीच कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, नोक झोंक हो जाती है, पर अपनों के प्रति जो लगाव है, जो झुकाव है, जो खिंचाव है, वह अपने आप में एक अद्भुत एहसास है, राइट? जी दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जब तक हो सके अपने रिश्तों को संभाल कर रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स यह गाना जो है जाएगा सरिता जी के नाम, जो गुरलैंड से साथ दे रही है, और उनके पूरे परिवार के नाम।

जी दोस्तों, ब्रह्मस्थान से उषा जी साथ दे रही है, लेकिन आप कहती हैं आप कुछ उदास है, पता नहीं क्यों, क्या कारण है, लेकिन लाइफ है, कभी खुशी कभी गम है, लेकिन आशा करते हैं कि इससे भी आप उभर जाएंगी। तो चलिए फिल्म रात और दिन का गाना आपके नाम।

0: ना सफर, हाँ ना सफर।
1: जी दोस्तों, मादाल बेस से यहाँ पर अनीता जी साथ दे रही है और आप कहती है कि उम्मीद से भरी ये जिंदगी तुम्हारी, आपका स्वागत हो, आपका दिन शुभ मंगल हो, यही मेरी दुआ है। थैंक यू फॉर दिस स्वीट मैसेज अनीता जी। और आपकी फरमाइश है फिल्म दुनिया का गाना, और ऑफ कोर्स देवानंद पर आधारित है, दूरियां नज़दीकियां बन गई, और यह गाना जाएगा ऑफ कोर्स आपके नाम, करुणा, अमृता, वर्षा और सभी दोस्तों के नाम। और क्या पता किसी खास के नाम आप कह रही है दूरियां नज़दीकियां बन गई, तो अगर ऐसा हो तो शायद उनको इशारा मिल ही जाएगा। तो चलिए यह गाना आप सबों के नाम।

जी दोस्तों, हमारे और आपके बीच जो रिश्ता है, जो दूरियां हैं, वो समय के साथ साथ भी वह जो है नजदीकियां बन गई। वेल दोस्तों, सीरत जी कहती है कि जो जिसका है उस तक मिल ही जाता है, जो जिसका है उस तक मिल ही जाता है। नदियां कहां सीधा रास्ता चुनती हैं, कई पहाड़ों से घूम कर, कई पत्थरों को चूम कर, कई चट्टानों से टकरा कर, मीलों का सफर तय करके अंततः सागर से मिल ही जाती है। बीज मिट्टी के अंधेरे में दब कर भी एक दिन रोशनी तक पहुंच ही जाती है। बादल न जाने कितनी दिशाओं में भटकते हैं, पर जिस धरती के हिस्से की बारिश हो वही जाकर बरसते हैं। सूरज चाहे रात भर आंखों से ओझल हो,

जिस खिड़की पर उसकी रोशनी लिखी हो सुबह वहां पहुंच ही जाती है। रास्ते सीधे हो ये जरूरी नहीं, सफर छोटा हो ये भी जरूरी नहीं। कभी देर होती है, कभी दूरियां होती हैं, और कभी कभी बीच में परेशानियां भी आती है, पर जो तुम्हारा

कर भटक कर वक्त लेकर ही सही अंततः तुम तक पहुंच ही जाएगा। भरोसा रखो। ये लम्हा फिलहाल जी लेने दो। रिव्या जो आप से मालाजी साथ दे रही हैं और आप कहती है कि आपकी बहू किरण की फरमाइश है फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे और यही गाना जाएगा ऑफ कोर्स आपकी बहू किरण के नाम कनेल कनेश कविश सत्यम स्वयं मालाजी के नाम शिव हैं और केविन के नाम

बोबासा से हर्षदी साथ दे रहे हैं और आप कहती हैं फिल्म मस्ती का यह प्यारा खूबसूरत सा गाना आपकी प्यारी अनु के नाम, और आप कहते हैं कि आप उन्हें कभी भी दगा नहीं देंगे, यहाँ उनका वादा है आपसे।

पोएंटू साहब से शमीमा जी जो हैं जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, और आप कहती है कि आप मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़ी फैन हैं और आप फिल्म हनीमून का गाना जो है सुनना चाह रही है। तो चलिए यह गाना आपके नाम और सभी सुनने वालों के नाम।

0: खाना सफर।
1: जी दोस्तों, यहाँ पर बेल्जियम से प्रकाशवती जी साथ दे रही हैं और आप कहती है कि मौसम जो है बेल्जियम में सुहाना है और आप जो है स्विमिंग करके आ रही हैं और हमारे गानों का लुत्फ़ उठा रही है। तो चलिए अगला गाना फिल्म दूसरा आदमी का गाना आपके नाम नज़रों से कह दो कि क्या आया है, मिलन का मौसम आया है।

कस्टेल से अंजनी शिवराजी साथ दे रही हैं, लेकिन जो गाना आपने मांगा है वो नहीं मिल रहा है जी, क्षमा कीजिए इसके लिए। लेकिन चूंकि आपने एक ऐसा गाना मांगा जो माँ और बेटे का प्यार

जी दोस्तों, हमारे जाने का समय आ ही गया है और अगला और अंतिम तराना हमारे सभी प्यारे लिसनर्स के नाम और जिन लोगों को लाइन नहीं मिली आज उनके नाम जो आएगा, विशेषकर बब्बू अनंतवा जो हैं कैटरबोन से, रेहाना ऑफ नोत्रडम और जितने भी लिसनर्स हैं, हम भरसक कोशिश करते हैं कि आप सभी का फ़ोन कॉल्स ले, मैसेजेस पढ़े, लेकिन जिन लोगों का आज लाइन नहीं मिली, जिन लोगों को लाइन नहीं मिली उनके लिए यहाँ अंतिम गाना। और इसके साथ साथ अनीता को दीजिए अनुमति, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले सप्ताह को। और अलका जी हाजिर हो गई हैं अपने कार्यक्रम के साथ, तो चलिए 2 बजे समाचार होगा और उसके बाद अलका जी का कार्यक्रम होगा। चलिए यह गाना आप लोगों के नाम। नमस्कार, ठीक है, बाय बाय।

0: की पुष्टि के लिए ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पारित होना जरूरी था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को लेकर आपत्ति जताई है। न्यूयॉर्क में ब्रिटिश विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद मर्शन विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका तीनों के लिए स्वीकार्य समाधान तलाशने की इच्छा ब्रिटिश सरकार ने दोहराई है। मॉरिसन सरकार के अनुसार शागोस पर मॉरिसस की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं है। पर्यटन की अब खबर। पर्यटन मंत्री रिशा जुवाल ने आज रोड्रिग्स के मुख्य आयुक्त फ्रांसो ग्रांको से मुलाकात की। बातचीत में होटल और पर्यटन सेक्टर में ट्रेनिंग, रोड्रिग्स में जरूरी बुनियादी सुविधाओं और दोनों टापुओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मंत्री ने बैठक को सकारात्मक बताया और कहा कि मॉरिसस रोड्रिग्स के पर्यटन के विकास में अपना सहयोग जारी रखेगा। विदेश स्तर पर फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा को अमेरिका में एक और कानूनी झटका लगा है। न्यू मैक्सिको की एक ज्यूरी ने माना है कि फेसबुक ने लोगों को उनके निजी डेटा के इस्तेमाल के बारे में गुमराह किया। ये मामला कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद से जुड़ा है। 2018 में सामने आए इस विवाद ने दिखाया था कि फेसबुक के करोड़ों उपयोगकर्ताओं का डेटा उनकी जानकारी के बिना राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। कांपुरन पुस्तुफ्लाक में 33 साल के 33 years old के प्रवीण बोहला की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें ब्लैक के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उनकी बहन श्रीमती पूनम बोहला के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कटकोकू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। योंगटाओ रोड ग्रांबोआ में 54 साल के 54 years old के श्री अजय सिबारत की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें लुलू के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल रविवार 27 सितंबर को सुबह के साढ़े दस बजे उन्हीं के मकान ग्रांबोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमोरो एट 10:30 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: On NBC Play and NBC. इतिहास के झरोखों से
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं और सुमिता आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं और आज हम मिल रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर। और आपका और हमारा संपर्क नंबर रहेगा 4028070 पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बस विषय की हम शुरुआत करने ही वाले हैं। श्रोताओं, ये महीना बहुत ही सुंदर महीना है। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें इस महीने में। महान लोगों के जन्मदिन हैं, कहीं पर बॉलीवुड के लोग हैं तो कहीं पर महान लोग हैं। और तो और इस महीने में कहीं पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया चिंतित हो रही है तो कहीं पर नदियों को लेकर भी लोग सोच रहे हैं। श्रोताओं, जीवन भी तो एक नदी है ना, बढ़ता ही जाता है। आप कितने जन्मदिन मना लो लेकिन हर पल वह मृत्यु रूपी महासागर में मिलने के लिए बेचैन है। हर क्षण यह जीवन की जो काल यात्रा है, समय की यात्रा है, वह आगे ही बढ़ रही है। बिल्कुल यह जीवन नदी की तरह है। आप चाहे पहाड़ खड़े कर दो कि पत्थर लगा दो या पेड़ गिर जाएं, वह रास्ता खोज के आगे निकल ही जाता है। जीवन

0: कितने दुख सुखाते हैं, लेकिन वक्त इतनी बड़ी मरहम है कि हम फिर से आगे चलते ही जाते हैं। तो श्रोताओं, ये नदियाँ हमारा जीवन है। जहाँ जीवन नदियों की तरह है, उसी तरह से नदियाँ हमारा जीवन है। श्रोताओं, आप इतिहास के पन्ने पलट कर देख सकते हैं, जिन देशों में, जिन स्थानों पर नदी और पानी है, वहीं पर ही सिविलाइजेशन का विकास हुआ है, वहीं पर ही मनुष्यता और मनुष्य विकसित हुए हैं। और यदि भारत की आर्ष संस्कृति या संन्यास संस्कृति की ओर पलट कर देखें, जिसे हम कहें कि आर्य संस्कृति, नदियों के किनारे ही हमारे जितने ऋषि मुनि हुए, इन्होंने तपस्याएं की। यदि पहाड़ों पर भी गए तो देखिए, ग्लेशियर भी वहीं पर हैं, नदियां वहीं से ही निकलती हैं। तो पानी, नदी और तपस्या, पानी, नदी और जीवन, इसका संबंध बड़ा ही गहरा है। तो आज हम वर्ल्ड रिवर डे, जो पूरी दुनिया आज नदियों को बचाने की बात कर रही है, उसकी चर्चा करेंगे। मैंने और सुमी ने सोचा कि क्यों ना आज हम नदी की बात करें। यद्यपि मॉरिशस में नदियाँ ज़्यादा बरसाती नदियाँ हैं, या जो थोड़ा समुद्र से तट जुड़ा हुआ है, वहाँ समुद्र का पानी आ जाता है तो वह एक छोटी नदी का रूप ले लेती है। अन्यथा यहाँ पर अधिकतर नदियाँ बरसाती हैं। जब बारिश बहुत होती है, पहाड़ों से पानी तेज़ी से गिरता है, तो ये नदियाँ भरने लगती हैं और कभी कभी बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है। लेकिन भारत जैसे या यूरोप के जो बड़े देश हैं, यदि वहाँ पर हम नदियों को जाकर देखें तो नदियों का रूप बहुत बड़ा है। ये नदियाँ बहुत विस्तृत हैं और उन देशों, उन जगहों, उन राज्यों को उन्होंने पूरी तरह से परिपक्व, परिवर्धित और समृद्ध किया है। श्रोताओं, भारतीय परंपरा में नदी केवल जल नहीं है, नदी केवल पहाड़ से निकला एक प्रवाह नहीं है, नदियों को हमने माँ के रूप में देखा है। लेकिन अफसोस की बात है, माँ के रूप में देखने के बावजूद भी हमने अपने लाड प्यार में अपनी माँ नदियों को मैला अधिक किया है। इस कारण गंगा जैसी पवित्र नदी, जिसमें ये कहते थे कि आपके पाप धुल जाते हैं, आज तो लगता है लोगों के पाप समेट के हम ले आते हैं। तो श्रोताओं, नदियों को जीवन देना मानो अपनी सभ्यता और संस्कृति को जीवन देना है। तो सुमिता भी आपके लिए कुछ अपने विचार लेकर आई हैं, सुनते हैं उनको भी।
1: बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। और आज नदियों पर हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे वर्ल्ड रिवर्स डे यानी कि विश्व नदी दिवस की बात करें अलका जी, तो सितंबर महीने के चौथे रविवार को इसे मनाया जाता है, यानी कि ये कल मनाया जाएगा इस वर्ष। और नदियों का अपने आप में, पानी की बात करें तो कहते हैं ना कि जल ही जीवन है,
0: और ये 2005 से शुरू किया गया, आज हम 2025 को क्रॉस कर चुके हैं
1: जी।
0: तो 20 सालों से संसार परेशान है।
1: तो चलिए यहाँ पर हम मांग करेंगे जितने श्रोता, अगर नदियों के महत्व पर अगर आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं तो 4028070 होगा नंबर हमारा। अभी के लिए गाने के साथ प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।
2: इतिहास के झरोखों से

0: सचमुच श्रोता जिंदगी चलने का नाम है जो रुक गया वह डिप्रेशन में जाता है क्योंकि वहीं से डिप्रेशन शुरू होता है जहां आप जिंदगी में ठहराव ले आते हैं और आप अपने पिछली चीज को पकड़ कर बैठे रहते हैं। नदी कभी नहीं पिछला पकड़ती है, बस जहां से निकल गई सो निकल गई, अब समुद्र की ओर जाएगी, रास्ते में मिट्टी को सींचती हुई जाएगी, बेशक बाद में वो दूसरा रूप लेकर आती है, फिर से भाप से बादल, फिर से पानी, फिर से बर्फ और नदी बनती है। जीवन भी इसी तरह से है। तो श्रोताओं, इन नदियों को स्वच्छ रखना, जैसे जीवन में हम ठहर जाते हैं तो डिप्रेशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ऐसे ही यदि नदियों में हम कूड़ा डालेंगे तो पूरा संसार डिप्रेशन में चला जाएगा। जो आज हम पर्यावरण को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि हमने कहाँ गलत किया है। श्रोताओं, हम पर्यटन को बहुत पसंद करते हैं और हम दूर दूर तक जाते हैं, अब तो हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, लेकिन हमारे वो जो बेसिक सेंस है वो काम नहीं कर रही है। हमने खाया पिया पहाड़ों में ही कागज़ फेंक दिया, जूस के डब्बे फेंक दिए, प्लास्टिक की बोतलें बॉटल्स फेंक देते हैं। श्रोताओं, हम सभी आज यूट्यूब पर देखते हैं कितने किलो कितने टन कूड़ा कुछ जवान निकाल रहे हैं, कितनी मेहनत वो लोग कर रहे हैं। क्या हम उस मेहनत को मान देंगे? वे साफ कर रहे हैं और हम फेंक रहे हैं। चलिए, ये तो व्यक्तिगत बात हुई, अब कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनका काला पानी, जहरीला पानी, रासायनिक द्रव्य नदियों में जा रहा है। हम सरकारों पर आरोप लगाते हैं कि सरकारें नहीं देखती, उनको रोकती नहीं, लेकिन मेरा भी एक सवाल है, जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऐसे रासायनिक चीज़ों से बन रही हैं, जब तक समाज में उसकी डिमांड रहेगी तो बिजनेस चलता ही रहेगा। हम लोगों को भी मिलकर कुछ चीज़ों का बायकॉट करना ही होगा, जैसे प्लास्टिक को लेकर बहुत सारी चीज़ें। पुराने ज़माने में आप सबको याद होगा, दादी नानी थैला लेकर जाती थी, लेकिन आज हम सब प्लास्टिक ढूंढते हैं, हमें लगता है यूज़ एंड थ्रो होना चाहिए। तो श्रोताओं, ज़िंदगी भी यूज़ एंड थ्रो हो गई है, कोई उतनी कीमत ही नहीं डाल रहा किसी चीज़ की। जब तक आप यूज़फुल हैं बहुत अच्छा, जिस दिन आपके हाथ पर चलने बंद होते हैं अपने ही बच्चे थ्रो करने लग जाते हैं। तो ये नदी जहाँ जीवन का अर्थ सिखाती है, वहीं पर इन नदियों को साफ रखना वर्ल्ड रिवर डे को कंप्लीट करना है। श्रोताओं, नदियों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, जहाँ पर आप नदियों

0: की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नदियां जो है जीवन का प्रतीक है ना, जैसे आपने कहा बहते रहती है।
1: हाँ।
0: और जहां जहां से नदियां बहती है देखिए वो गांव में कितनी हरियाली होती है, वहां पर कितनी जो है
1: हरियाली, वहां तो इंडस्ट्रीज हो जाती है।
0: वो तो अभी की बात है। हाँ। आमतौर पर हम देखा जाए तो जहां से नदियां गुजरती है जहां पर पानी, खेती, हरियाली, और वहीं पर वहीं पानी जब ठहर जाता है तो वो पानी जो है सड़ने लगता है। तो कहीं ना कहीं जीवन भी आगे बढ़ने का नाम है और बहते रहने का नाम है। और जब भी विश्व जो है नदियों की बात करें, रिवर दिवस की बात करें, तो कई बहुत सारे जो है ऐसे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसके चलते जो है नदियों को साफ करने की बात होती है। बहुत सारे यंगस्टर्स इसमें भाग लेते हैं, बहुत सारे जो एनजीओस है इसका हिस्सा बनते हैं और सफाई में जो है अपना योगदान देते हैं। और इन सब से हमें भी सीख मिलती है कि हमें भी जो है पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए।
1: श्रुतों, अगर ये नदियाँ ना मिले हमें तो जानते हैं जीवन कितना अटक जाएगा। इन नदियों के सहारे ही हमारी बढ़त है, इन नदियों के सहारे ही जीवन चलता है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक दिन अगर पानी बंद हो जाता है तो कैसे हमको टेंशन हो जाती है। चाहे हम 6 डेगचियां भर के रख दे, 10 बाल्टियां, फिर भी परेशानी जितनी होती है
0: नल में पानी ना हो तो
1: हम सोच सकते हैं। वो जो सुबह उठते ही सबसे पहले मुंह धोना है, टॉयलेट जाना है, नहाना है, किचन में घुसते ही पानी चाहिए, सबसे पहले एक चाय के प्याले के लिए भी पानी चाहिए। तो कितना कीमती चीज़ है ये, और सब कुछ ये नदियों से ही मिलता है हमें। अगर ये नदियाँ ना हो, इनमें पानी ना हो, ग्लेशियर टूटने लग जाएं, तो अभी जो त्रासदी हमने देखी है उत्तराखंड की, उसे नेपाल में जो हुई है, बाद में उत्तराखंड में भी हो रही हैं, तो हम सब समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ भविष्य में हो सकती है।
2: इतिहास के झरोखों से

0: बहती
1: है। वाह जी वाह, इस गंगा को देखने के लिए तो आदमी मॉरिशस से जाता है, चार धाम की यात्रा करते हैं, पर इस गंगा ने जितना दिया हमने उसे समझा नहीं। श्रोताओं, कहते हैं कि गंगा में स्नान करने के बाद आपकी जो चर्म रोग होते हैं वे कम हो जाते हैं। जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि गंगा एक ऐसी नदी है, हमारे यहाँ पे सन्यासियों को जलाया नहीं जाता है और बच्चों को भी जलाया नहीं जाता है। हिंदू धर्म में जो छोटे बच्चे होते हैं इनको भी गड्ढा खोद के उसमें डाला जाता है, नदियों के किनारे अधिकतर इसको डाला जाता है। और ऐसी सन्यासी जो यदि कोई बहुत बीमार है और बहुत उम्र से हो गया कि अब उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, तो उसको जल समाधि दे दी जाती है। और ये जल समाधि भी है तो बड़ी कठोर, लेकिन सन्यासी का जीवन ऐसा ही होता है, क्योंकि अब जब पता है कि वह 90 वर्ष का हो गया या 95 का हो गया, अब नहीं जी सकता, तब एक भारी, खूब पूजा करते हैं उस आश्रम के लोग, और एक भारी पत्थर उसकी पीठ पर बांधकर नाव में ले जाके उसे फिर नदी में डाल देते हैं। इसे जल समाधि सन्यासी की कहते हैं। और अन्यथा जो सन्यासी लोग मरते हैं उनका गड्ढा खोद के एक समाधि की तरह से उनको बैठे बैठे ही बिठाया जाता है, क्योंकि वे प्राण बैठे हुए ही उनके छूटते हैं। लेकिन श्रोताओं, जितना भी संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, जो अंत्येष्टि, जब उसकी राख हम लोग लेकर आते हैं, वह हड्डियों की राख होती है, उसे हम इन नदियों में प्रवाहित करते हैं। तो श्रोताओं, हड्डियाँ टोटल कैल्शियम होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। सालों से हिंदू जाति इस परंपरा को निभा रही है। कोई भी अगर मरता है हिंदुस्तान में तो उसकी राख को हरिद्वार या ऋषिकेश में जाके नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो उस जल में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वह जल हमें स्वस्थ करता है। लेकिन अफसोस ये है कि जो रास्ते में, जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज, वहाँ पर जितनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उन फैक्ट्रीज से जो काला केमिकल युक्त पानी निकल रहा है, उसको कोई उसका इलाज ना करना या उसको दूसरे टैंक में ले जाके स्वच्छ ना करने के कारण नदियाँ इतनी मैली हो रही हैं कि वो बेचारा कैल्शियम और फास्फोरस भी अब काम नहीं कर पा रहा है। तो श्रोताओं, हमारी कमी के कारण ही इस वर्ष का जो नदी दिवस जो है, या विश्व नदी दिवस, उसका जो मोटो बना है वो है नदियों का अधिकार। हम महिला अधिकार की बात करते हैं, हम अब तो पुरुष अधिकार की भी बात करने लग गए हैं, बाल मजदूरी ना हो तो बच्चों के अधिकार की बात करते हैं। तो श्रोताओं, अब तो प्रकृति भी अपना अधिकार ढूंढ रही है। नदियों का अधिकार मतलब नदियां जानना चाहती हैं कि जो हमें गंदा कर रहे हैं उनके लिए कौन सा न्यायालय बना है, उनके लिए कौन सी सज़ा है, हमारे अधिकार कहाँ हैं। हम बोल नहीं सकती लेकिन हम बाढ़ ला सकती हैं, हम बोल नहीं सकती लेकिन बड़े बड़े ग्लेशियर टूट सकते हैं, हम बोल नहीं सकती लेकिन पूरा समाज को डुबो सकती हैं। तो श्रोताओं, इस वर्ष का विश्व नदी दिवस का शीर्षक ही यही है, नदियों का अधिकार।
2: बिल्कुल, आपने नदियों के अधिकार की बात की। एक समय ऐसा था कि गंगा के जल को इतना पवित्र माना जाता था कि कहते थे कि सालों साल जो है वो सड़ता नहीं था, खराब नहीं होता,
1: इसीलिए। और अभी देखिए, परिसरोवर का हम जल लाते हैं, खराब नहीं होता, क्योंकि वहाँ ना कोई कपड़े धोता है, ना मतलब साबुन नहीं है उसमें,
2: प्रदूषण,
1: कोई केमिकल साबुन नहीं है, तो जो नीचे स्रोत से आता है पानी वो पवित्र होता है। जैसे कुओं का पानी देखिए, नीचे गहराई से निकल के आता है, हमेशा सालों साफ रहता है वह पानी।
2: तो चलिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे सारे जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कुछ हो रहा है, इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि अब जो है समय आ गया है कि हम जो है पर्यावरण को और प्रदूषित ना करें, और जहाँ तक हो सके हर एक व्यक्ति जो है अपने अपना जो है कर्तव्य का पालन करते हुए पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करे।
1: और इस

0: इसके लिए केवल भारत ही नहीं, अमेरिका, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, बांग्लादेश, कनाडा, ब्रिटेन आदि सभी देशों में जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। खुशी की बात है कि भारत में अभी बहुत सी एनजीओज जिसमें युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, ये लोग काफ़ी काम कर रहे हैं और ये लोग अपने काम के माध्यम से कितने किलोमीटर तक की नदियों को साफ करके यूट्यूब पर हमें बार बार बता रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। अब हम पर है, हम अपने टूरिज्म के नाम पर, हम अपनी सुविधाओं के नाम पर अपनी इन पवित्र नदियों को गंदा ना करें। ये माँ का घर है, क्या कूड़ा माँ के घर में जाके डाला जाता है? तो ये सब नदियाँ, गंगा, कावेरी, सरस्वती, सिंधु, इन सब नदियों ने भारत देश के आर्य संस्कृति को जीवन दिया है और खड़ा किया है। इन नदियों के कारण ही आर्य भारत जैसे देश में टिक गए और वहीं रुक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ 6 ऋतुएँ, मौसम, पानी, हिमालय पर्वत, पूरा जीवन का प्रवाह बहुत ही सुंदर ढंग से चल सकता था। तो श्रोताओं, इन नदियों ने मानो जीवन के इतिहास को यहाँ पर एक ठहराव दिया था।
1: इतिहास के झरोखों से

0: चलिए, यहाँ पर आज विश्व नदी दिवस पर हम बात कर रहे हैं और बहुत सारी जानकारियाँ जो है नदियों को लेकर हम यहाँ पर बांट रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में अलका जी नदियों को जो है पूजा जाता है ना, नदियों को जो है देवियों के रूप में पूजा जाता है। भगीरथ ने कितनी तपस्या की थी तब जाकर गंगा माँ को धरती पर उतारा था।
1: वो मिथक बहुत सुंदर है, मतलब मैं तो कहती हूँ केवल भगीरथ नहीं थे, कई पीढ़ियों ने
0: वो चलता,
1: वो एक इंजीनियर थे तो उनको ऊपर से हिमालय से गंगा का रास्ता भारत में बनाना था। तो आप सोचिए, एक नदी का रास्ता बनाना, पहाड़ों की कटाई करके कि पानी उस देश को मिल सके, यह वह इंजीनियर थे

0: जो उन्होंने, इसीलिए उनके प्रयत्न को भागीरथ प्रयत्न कहा जाता है और आज ये मुहावरा बन चुका है
1: जी, मतलब कि अपने आप में एक लीनेज जैसे कह सकते हैं ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और नदियों की बात करें तो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही देखिए कितने तीर्थ बसते हैं, मंदिर बसते हैं, धर्मशालाएं बसती है ना, लोग जाकर रहते हैं। कभी कभार लोग बीमार पड़ जाते हैं तो बोलते हिल स्टेशन चलो, तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति ही है।
0: जैसे यहाँ भी देखो आपको खांसी ज्यादा हो रही हो या लंग्स में

0: अंदर की ह्यूमिडिटी को कम करता है वह नमक।
1: पर एक समय ऐसा भी था अलका जी जहाँ पर हम नदियों को पूजते थे, आज वही नदियाँ कितनी सारी चुनौतियों का सामना कर रही हैं।
0: पूजा के नाम पर गंद पर डाल रहे हैं वहाँ पर,
1: क्योंकि पूजा करके हम उसी नदियों में, जैसे अभी अगर हम गंगा तालाब पूजा करने जाते हैं तो सबसे मांग की जाती है कि जो भी आपने पूजा किया है चीजों को आप
0: समेट कर,
1: जो भी प्रसाद है आपस में बांटते।
0: और सोचने की बात है, मान लीजिए आप नहीं समेटते, छोड़ कर आते तो कूड़ेदान में जाता है ना,
1: बिल्कुल,
0: तो आपकी श्रद्धा का क्या फायदा
1: जी।
0: उसको घर लेकर आइए, केला है, नारियल है, अपने बच्चों को खिलाइए, दोनों चीजों में इतना कैल्शियम होता है, आप उसको कूड़ेदान के लिए छोड़ कर आ जाते
1: और
0: हैं।
1: जो फूल वगैरह आपने चढ़ा दिया, आप अपने आंगन में ही किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, खाद बन जाएगी, हो जाएगा,
0: यहाँ तक कि बीज उसमें रहते हैं तो बाद में पौधे निकल आते हैं। तो ये सोच बदलनी होगी हमें। और अब तो ये बहुत बड़ा स्लोगन काम कर रहा है, स्वच्छ नदियाँ बेहतर कल। जितनी नदियाँ साफ होंगी उतना हमारा कल बेहतर होगा। श्रोताओं याद करिए, मॉरिशस में भी जो पोर्ट लुइस में बाढ़ आई थी वह इसीलिए आई थी कि इतना कूड़ा, इतना प्लास्टिक सब ड्रेनेज में फंस गया था कि पानी ओवरफ्लो हो गया था और वो नदियों में, नालियों में निकल नहीं पाया था। बाद में इन्हीं नालियों को चौड़ा किया गया, सफाई अभियान चलाए गए। और ये जो स्वच्छता अभियान है ये सभी नदियों के लिए पूरी दुनिया चला रही है। और इसके साथ ही अब तो नागरिकों द्वारा क्या कहा जा रहा है, स्वच्छता ही सेवा है। जैसे पहले हम कहते थे ना कि मानव सेवा ही भगवान की से, माधव सेवा, अब ये स्लोगन आता है कि स्वच्छता ही सेवा है। कि यदि हम प्रकृति को स्वच्छ करते हैं तो मानिए ये बहुत बड़ी सेवा करते हैं। क्योंकि देखिए, अगरबत्ती के पैकेट हैं, धूप का प्लास्टिक है, दूध का प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, मान लीजिए केले का छिलका, चलो वह तो सड़ के खाद बन जाएगा, लेकिन जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं ये तो कितने समय तक रहती हैं और फिर नदी में रहने वाले जो छोटे जीव जंतु हैं उनको भी मारती हैं। तो कितना हमने प्रकृति का साथ दिया, हमने तो उल्टे और बुरे कर्म कमाए। तो श्रोताओं, नदियों की रक्षा करना, इतिहास बार बार कह रहा है कि जब तक नदियाँ साफ रहीं जीवन अच्छा चलता रहा, लेकिन जब नदियाँ दूषित होती हैं तो हम भी प्रदूषित हो जाते हैं।
2: इतिहास के झरोखों से

सतमुच श्रोताओं, बार बार पलट के सोचिए कहाँ जा रहे हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलें तो 2005 में नदियों की रक्षा को लेकर संकल्प लिए गए, क्योंकि यदि नदियों की रक्षा नहीं हुई तो मनुष्य भी नहीं बचेंगे। और भारत ही नहीं, दुनिया भर के बहुत देशों ने विश्व नदी दिवस मनाया। और इसमें कितने ही देशों ने, चाहे वो यूरोप के थे या इधर उत्तर इधर के थे, बांग्लादेश इत्यादि, इन्होंने भी इसे मनाया। और कुछ लोग तो संकल्प लेते हैं कि वे नदियों को बचाने में अपना पूरा योगदान देंगे। और भारत को तो नदियों की धरती कहा जाता है। मैंने इसीलिए आपसे कहा ना कि आर्य भी यहाँ इसीलिए बस गए थे क्योंकि यहाँ पर नदियाँ बहुत थी। भारत में अगर हम गिनती करें, अगर हम इतिहास की पुस्तक को खोलें, तो लगभग 200 मुख्य नदियाँ हैं। इसीलिए भारत में नदियों का विशेष महत्व है। और हम इन नदियों को पवित्र क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे ऋषियों ने इन नदियों को देखा कि वे अपने जीवन से पूरी सभ्यता को सींचती हैं, जीवन देती हैं। इन नदियों के सहारे कितने लोगों का जीवन चलता है। और ये नदियाँ प्रकृति को हरा भरा रखती हैं, ये नदियाँ कृषि को आगे बढ़ाती हैं। वो सतलुज हो, ताप्ती हो, यमुना हो, गंगा हो, वितस्ता हो, कुंभा हो, इन नदियों ने वर्षों वर्षों तक मिट्टी को पानी दिया, जीवन दिया। इसीलिए शास्त्रों में नदियों का कितने भजन है और उनकी कितनी पूजा की गई है। विशेष करके जो 7 नदियां हैं हमारे शास्त्रों में, गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी, साउथ की भी हैं और ईस्ट की भी हैं। ये सारी जो नदियां हैं इनको श्रेष्ठ नदियां कहा गया। और केवल शास्त्रों में नहीं, वेद पुराणों में

0: इन नदियों की प्रशंसा की गई है। क्यों? ये नदियाँ पानी देती हैं सिंचाई के लिए, इन नदियों के सहारे विद्युत आत्म बिजली का भी उत्पादन हो जाता है, मछुआरों का जीवन या लोग जो खाते हैं नदी में जीव जो पलते हैं उनका जीवन चलता है, और फिर पर्यटन और मनोरंजन तो आज पूरी दुनिया में है। बस दुख यही है कि पर्यटन और मनोरंजन के नाम पर हमने नदियों को मैला कर दिया है।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं नदियाँ के जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं अलका जी अर्थव्यवस्था से भी इसका जो है बड़ा ही संबंध
0: जी।
1: है। बहुत से लोग मछली मार करते हैं, मछलियों का पालन पोषण करते हैं,
0: पूरी दुनिया में सी फूड्स का तो पूछिए ही मत।
1: ये है
0: और नदियों से
1: अपनी बात ही की वहीं पर हाइड्रो पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इसका कितना बड़ा योगदान है।
0: नदियों की मछलियां खाई भी जाती हैं।
1: हाँ हाँ, और वो सेहत के लिए अच्छी भी होती है
0: क्योंकि मीठे पानी की होती
1: है ना। वहीं पर कितने सारे ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो नदी से जुड़े होते हैं। कई कई गाँव तो जैसे के जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं तो नदियों से ही जो है उनका जो है रोजगार चलता है।
0: केवट का उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने श्री राम को कहा कि आप तो आपके पांव धोने पड़ेंगे, तो पूरी एक केवट जाती है जिसकी पूरा जीवन यापन इन नदियों के सहारे ही होता है।
2: इतिहास के झरोखों से

0: श्रोताओं नदिया के साथ जुड़े हुए कितने गीत हैं, क्योंकि जीवन नदी है। नदी ना हो, पानी ना हो तो हो आप समझ सकते हैं राजस्थान से बढ़कर दुख होगा हमको। और आप ध्यान से देखें, जो भारत की नदियां हैं अधिकतर उत्तर से पूर्व की ओर बहती हैं, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, जो आसाम से होती हुई नीचे तक आती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इन नदियों के कारण पूरा देश, पूरे राज्य, सभी को ही मानो पानी और जीवन दोनों मिलता है। सबसे बड़ी बात, ये नदियाँ कृषक का जीवन है। अभी देख लीजिए मॉरिशस में बारिश नहीं आ रही तो कितनी चिंता का विषय बना हुआ है, सब्जियों के दाम फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं। तो पानी अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। सरकार अभी यही सोच रही है कि जब बारिश होती है तब उस पानी को कैसे बचाया जा सके, किस तरह से चीज़ों को तैयार किया जाए, इसको लेके रोज़ बातचीत हो रही है। तो श्रोताओं, ये जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिनसे बड़े बड़े देशों को जीवन मिलता है, आप कभी थाईलैंड भी गए होंगे, वहाँ की नदी भी देखिए, पूरा टूरिज्म उस नदी पर चल रहा है। जितने उस नदी पर नाव, बड़ी बड़ी नावें जो चलती हैं, शिप चलते हैं, पूरी नाइट राइट जो नाइट लाइफ है वह उसके ऊपर चलती है। ये उनका अपना टूरिज्म का ढंग है, लेकिन खाना पीना डांस उसके लिए लोग पे करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नदी के साथ टूरिज्म जुड़ा है, ठीक है, नदियाँ हमें बहुत कुछ दे रही हैं, अब जब उन नावों में बैठते हैं तो वह शाम की ठंडी हवा, वह संगीत व्यक्ति के जीवन को रंगीन करने लगता है। पर हम अपनी रंगीनियों के कारण नदी को मैला करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है।
1: बिल्कुल। और नदियों के इतिहास की अगर बात करें अलका जी, तो कहते हैं कि मानव इतिहास के जो है संदर्भ में देखें तो जितना जो है हम जितने पुराने हैं, नदियां भी अपने आप में उतनी ही पुरानी है, हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं शायद कहते हैं ना कि जो है जीवन का जो है जीवन की शुरुआत ही कह सकते हैं पानी से हुई है, और पानी नहीं होता तो शायद जीवन नहीं होता। इसलिए देखिए ना, पानी को ढूंढने के लिए आज वैज्ञानिक कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: धरती को छोड़कर मार्स तक पहुँच गए हैं ये देखने के लिए कि कहीं वहां पर जीवन तो नहीं है।
0: मतलब पानी होगा तब ना जीवन की कल्पना होगी। तो नदी पानी ये तो जीवन ही है श्रोताओं।
2: इतिहास के झरोखों से

0: चलिए यहाँ पर ये बड़ा ही खूबसूरत गाना है और अपने आप में आज के समय में ये गाना कितना फिट बैठता है ना अलका जी क्योंकि अभी के समय में हम देखते हैं कि नदियाँ हमारी कितनी प्रदूषित हो रही है, नदियाँ ही नहीं बल्कि समंदर भी, जहाँ जहाँ पर जो है,
1: मैं तो कहूंगी जहाँ मनुष्य है ना वही गंद मचा रहा है वो,
0: तो कहीं ना कहीं हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप में पूरा विश्व जब इस दिन को मना रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप में सिचुएशन इतनी अलार्मिंग हो गई है, तब जाकर तो इतना कार्य किया जा रहा है, लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है।
1: तो श्रोताओं, अगर नदियां ना जिंदा रहीं तो हमारा भी जीवन संकट में आ ही जाएगा, इस बात का ध्यान हमको रखना ही होगा। क्योंकि आज विश्व नदी दिवस मनाना पड़ रहा है और वह भी 2005 से 20 साल से ऊपर हो गए इन नदियों को साफ करने की जद्दोजहद को लेकर। मुझे याद है कितने सालों पहले गंगा सफाई को लेकर एक पूरा डिपार्टमेंट खड़ा किया गया था, लेकिन आज भी गंगा मैली और ऐसे गीत लिखे जा रहे हैं। और अब तो बहुत खुशी होती है कि कुछ नौजवान आगे बढ़े हैं और ये नौजवान खुद इस जिम्मेवारी को अपने हाथों में ले रहे हैं और वे मिलकर जितना उनसे हो पा रहा है वे कर पा रहे हैं। और श्रोताओं, कभी कभी तो वे लोग कहते हैं कि इतना गंद होता है कि वे बीमार भी होते हैं, कभी उनको कोई स्किन डिजीज़ भी हो जाती है। तो सचमुच प्रकृति के सच्चे सेवक वही हैं। इसीलिए इधर उधर दान देने की बजाय हमें ऐसे होनहार बच्चों की मदद करनी चाहिए जो बच्चे पर्यावरण और प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए, उसे साफ करने के लिए अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना यौवन दान में दे रहे हैं। तो श्रोताओं, सचमुच आज अगर असली दान पुण्य कोई करना चाहता है तो प्रकृति को बचाना ही होगा, खास करके नदियों को। इसीलिए विश्व नदी दिवस भी मनाया जा रहा है और ये नदियाँ हमारे जीवन का पर्याय हैं। आप सभी को विश्व नदी दिवस अभिनंदन, लेकिन उसके साथ साथ हम खुद भी कूड़ा ना फेंके और यदि कहीं कूड़ा दिखाई दे तो कभी कभी

0: एक बड़ा प्लास्टिक लेके कुछ बटोर के एक घंटा समझ लीजिए नदी की सेवा कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, जैसे मंदिर को साफ करते हैं ऐसे ही अपने आसपास की नदी को एक घंटा अपना दें, समय दान में दें, मेहनत दान में दें और छोटे से एरिया में से कुछ कूड़ा निकालकर बड़े कूड़ेदान तक पहुंचा सके। आज विश्व नदी दिवस के लिए व्यक्तिगत प्रयास चाहिए। सरकारों को देखते रहेंगे तो 20 साल और गुजर जाएंगे और उसके बाद हमारा जीवन 20 साल और बीमारियों से बढ़ जाएगा। तो श्रोताओं आप सभी को नदी दिवस अभिनंदन।
1: बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का जो इतिहास के झरोके कार्यक्रम है समाप्त होने को चला। मिलेंगे अगले सप्ताह 3 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा कार्यक्रम का रिब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे। तो अगले सप्ताह हम फिर आएंगे सभी से मिलने, है ना,
0: एक नए विषय के साथ। इंतजार करिएगा।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.

0: Excuse me, I want to speak to you. Can I speak to you? I want to talk to you for a minute. Hello, listen to me. Are you Berehem?
1: सुनते समाचार आस्था जी के साथ नमस्कार।
2: नमस्कार। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मॉरिशस ने छोटे टापू देशों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार और नई तकनीकों पर बात की। उन्होंने फिलिस्तीन, शागस और ट्रोमलिन का मुद्दा भी उठाया। अपनी आगामी ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डॉ नवीन रामगुलाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल से मिलेंगे। बातचीत में शागस समझौते पुष्टि से जुड़े हाल के घटनाक्रम पर चर्चा होने वाली है। ये जानकारी कल कैबिनेट के फैसलों में दी गई। प्रधानमंत्री ने 21 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी

0: बर्नहम से फोन पर बात की थी। शागर समझौते पर 22 मई 2025 को हस्ताक्षर हुए। इसकी पुष्टि के लिए ब्रिटिश संसद में एक बिल पारित होना था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को लेकर आपत्ति जताई है। न्यूयॉर्क में ब्रिटिश विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद धनंजय रामफल ने कहा कि ब्रिटेन, मॉरिशस और अमेरिका तीनों के लिए स्वीकार्य समाधान तलाशने की इच्छा ब्रिटिश सरकार ने दोहराई है। मॉरिशस सरकार के अनुसार शागस पर मॉरिशस की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं है। अब पशुओं के आयात से जुड़ी ये खबर। नामीबिया में फुट एंड माउथ डिजीज का मामला सामने आने के बाद मॉरिशस ने वहां से मवेशियों का आयात रोक दिया है। कार्बसबर्ग के एक व्यवसायिक फार्म में जिन 11 मवेशियों में बीमारी के लक्षण दिखे थे उनमें से 10 की जांच 23 सितंबर को पॉजिटिव आई है। दक्षिण अफ्रीका के बाद नामीबिया दूसरा देश है जहाँ से मवेशियों के आयात के परमिट निलंबित किए गए हैं। फिलहाल केन्या ही ऐसा देश है जहाँ से मवेशियों के आयात को पशु चिकित्सा सेवाओं की मंजूरी है। पोर्टली में 19वां चाइना टाउन एंड कल्चर फेस्टिवल आज से शुरू हुआ है। दो दिन के इस आयोजन में चीनी खान पान, संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। आयोजकों के अनुसार इस साल 18 ग्रुप भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में ड्रैगन डांस, संगीत और दूसरी प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। उकने रोड रोजिल में 83 साल की 83 इयर्स ओल्ड की मिसिज कालिंदी रामेसर की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम एमरित, लोग उन्हें मीनू के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज शाम के चार बजे उन्हीं के मकान रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिव्यू की शमशान भूमि ले जाया जाएगा। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: You're listening to RM3 Radio, Mana.

0: नमस्कार। आज की चर्चा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा में हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है SMEs फेयर सालों PMU। आज और कल एक फेयर एक सालों PMU का आयोजन हुआ है कैथोबोन में, और इस फेयर के अंतर्गत, इस मेले के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां हैं, किन के द्वारा यह आयोजित हुआ है, आपको इससे कौन कौन सी सुविधाएं होगी, क्या लाभ मिलेगा आपको, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस फेयर के आयोजक समिति के दो प्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं, और आप हैं विनीत जगेसर जी। विनीत जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और साथ में है अनीश कुमार जी। नमस्कार अनीश जी। आप दोनों का आज की चर्चा कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो सालों PMU SMEs फेयर आयोजित हुआ है आज और कल के लिए, इसका समय क्या है, किस समय से ये शुरू हो रहा है, कहाँ पर ये लग रहा है, और इसमें किस किस का मतलब कि कंट्रीब्यूशन है, किन किन संगठनों ने इसमें साथ दिया है, कौन कौन से ऐसे छोटे मध्यम उद्योग हैं जो आज और कल एकत्र हो रहे हैं।
1: सबसे पहले मैं आपका और सभी दर्शकगण और श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं। हमारा जो PME फेयर है आज शुरू हो रहा है 9 बजे, सो सितंबर 26, और 9 बजे रात तक चलेगा, और फिर कल संडे 9 बजे से लेकर 6 बजे तक।
0: कहाँ?
1: बासंगोद कैथोबोन।
0: अच्छा।
1: तो ये जो हमारा एक्टिविटी है दो तीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है। तो मेन है हमारा पालमा नेबरहुड वेलफेयर एसोसिएशन, जिनका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और 108 रेज जो अनीश जी यहाँ पे है वो उनकी सेक्रेटरी है, और साथ में ही है नेहरू शिक्षा भवन जिसने हमें जैसे लॉजिस्टिक्स एंड वेन्यू दिया है, और एक फेडरेशन भी है हिंदू एकता संघ ऑफ कैथोबोन जो हमारे जैसे एम्पावर करते हैं जैसे रिलीजियस एंड कल्चरल आइटम्स ऑन द कंट्री। और जो PME एक्सपो सेल आज जो लग रहा है वो हमारा आयोजित किया है, और जैसे सुबह 9 बजे से लेके

0: शाम के 9 बजे तक,
1: और रात के 9 बजे तक,
0: रात के 9 बजे तक,
1: आज और कल दोनों,
0: कल 6 बजे तक शाम के।
1: अच्छा,
0: और हमारी एंट्री इसमें बिल्कुल फ्री है सबके लिए।
1: ओके, मतलब टिकट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है।
0: टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, और हमारे पास बहुत डिफरेंट एक्सपोजेंट्स हैं, जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट सर्विसेज, जो बाद में हम डिटेल्स दे सकते हैं आपको। तो हम करेंगे जैसे रिक्वेस्ट सबको जो पास में रहते हैं, जो दूर में जो भी रहते हैं, जो आना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और जब एक मेले का आयोजन होता है, एक फेयर, एक सालों का आयोजन होता है, तो उसमें आने वाले जो जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें, इसके लिए कई गतिविधियों का साथ साथ आयोजन होता है। तो इस फेयर में और कौन सी गतिविधियाँ शामिल हैं?
2: इस फेयर में और होगा रक्तदान होगा, मेडिकल ब्लड डोनेशन होगा, सिर्फ आज के लिए ब्लड डोनेशन होगा, और मेडिकल कैंप होगा, टॉन्सिल, आँख के लिए, डायबिटीज के लिए, ये सब होगा।
1: मतलब चेक, फ्री हेल्थ चेक,
2: फ्री चेकअप।
1: ओके,
2: मेडिकल कैंप जैसे
1: जी हाँ।
2: एक
1: और इसमें सभी भाग ले सकते हैं,
2: सभी ला सकते हैं
1: जी। और जब हम सालों पीएमए एसएमईज की बात करते हैं, तो जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, वो जो पैदावार जिन सामानों का पैदावार करते हैं, उसकी बिक्री होती है। तो इस फेयर में मतलब कि ये सिर्फ लोकल है या इसमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी होंगे? मतलब कि हमें इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, कौन कौन से सामान इसमें प्रस्तुत किए जाएंगे और किन द्वारा?
0: तो पहली बात तो हमारे सब जो एक्सपोजेंट है वो मॉरिशन लोकल हैं।
1: अच्छा,
0: उनमें हैं जैसे आर्टिजनल, जैसे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स, और घर में जो बनाते हैं, जैसे housewives जो होती है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ऐसे एंटरप्रेन्योर, तो हमने सबको अपॉर्चुनिटी दी है
1: हाँ।
0: कि आके यहाँ पे अपना प्रोडक्ट्स को पब्लिक के सामने लाएं
1: जी हाँ।
0: तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास 60 एक्सपोजेंट्स हैं, और कल रात तक हमको ऑल फोन कॉल्स आ रहे थे कि और अगर जगह है हम आ सकते हैं, तो हमको रिफ्यूज करना पड़ा क्योंकि जगह भी
1: देखनी चाहिए, 60 अगर नहीं है
0: 60 ऑलरेडी। सो इनमें हमारा बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, मैं अनिश जी भी बाद में दे सकते हैं, जैसे टेक्सटाइल, जैसे फूड प्रोडक्ट्स, जैसे होगा जैसे एक्सेसरीज, ज्वेलरी, और अभी दिवाली आ रही है तो उसमें भी जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स, कपड़ों का, बच्चों का, जैसे वुमेन सबका प्रोडक्ट्स होगा उसमें
1: ज़रूर। तो अनिश जी, आप हमें कुछ ज़्यादा जानकारी देंगे, क्योंकि जब ऐसा एक कोई मेला लगता है तो हमें पता है कि किसी ना किसी मौके को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन होता है। अभी आपने दिवाली की चर्चा की, अभी नवरात्रि भी आने वाली है, तो हमें आप ज़रा विस्तार से बताएं कि मतलब कि अगर जनता को वहाँ जाना हो तो उन्हें कौन कौन से पैदावार मिलेंगे और किन किन अवसरों के लिए?
2: सबसे पहले केदारनाथ पूजा सब आ रहे हैं, वो नवरात्रि के लिए सारे प्रोडक्ट रिलेटेड ब्रिंग करेंगे
1: जी हाँ।
2: और लोकल में बासन रोड में एक पूजा शॉप है जो बिलो फैमिली के लिए है, वो भी आएंगे, वो दिवाली और नवरात्रि के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट ला रहे हैं
1: जी।
2: और दिवाली स्पेशल के लिए एक हमारा संयोजक हैं, वो उसका नाम मिठास है, मिठास
1: जी,
2: वो लड्डू लाएंगे, बातात लाएंगे, स्पेशल डिस्काउंट स्पेशल सिर्फ उनके लिए।
1: अच्छा,
2: वे लोगों को स्वाद टेस्ट करेंगे और वो ऑर्डर लेंगे।
1: अच्छा,
2: ये सिर्फ इसके लिए।
1: अच्छा, मतलब कि आपके टेस्टिंग के लिए वो सामान लाएंगे हाँ। लेकिन आप ऑर्डर करेंगे, क्योंकि मैं अभी सोच रही थी कि अभी से ही दिवाली के लिए लड्डू कैसे खरीद सकते हाँ, हैं, तो टेस्टिंग
2: सकते
1: करने
2: हैं।
1: के बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं दिवाली हाँ। के लिए
2: दिवाली बॉक्स होगे और दिया होगा।
1: अच्छा, और सजावट के सामान,
2: सजावट के सामान,
1: और फिर
2: दिया वो जो जानते हैं वो DIY वो सब पेंट करते और लोगों को बेचेंगे
1: जी हाँ। और फिर दिवाली और नवरात्रि के अलावा और कौन कौन से सामान होंगे?
2: एंड ऑफ ईयर के लिए वो चादर होगे, रिडो होगा,
1: घर के सामान
2: किचन के सामान स्पेशल होगा, और मेडिकल के लिए एक हेड मैसेजर, ये बहुत डिस्काउंट, ये लगभग 800 बेचते नॉर्मल, डिस्काउंट में 300 के लिए होगा।

0: अच्छा, मतलब कि जो पैदावार यहाँ पर बेचे जाएंगे उनमें काफी हद तक डिस्काउंट लाया जा रहा है, ऐसे दाम में बेचे जाएंगे जो कि आपको आमतौर पर बाजार पर नहीं मिलेगा।
1: स्पेशल और होगा वो जो सोलर पैनल,
0: जी हाँ,
1: और सोलर वाटर, इस पर भी डिस्काउंट होगा और सरकार के ग्रांट
0: के हिसाब से
1: ही।
0: तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, अभी नवरात्रि आ रही है, दिवाली भी आ रही है और इसके बाद नववर्ष का स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए हम घर के सामान भी खरीदते हैं। तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए छोटे और मध्यम उद्योगों को सहायता देते हुए आप यहां से अपनी ख़रीदारी डिस्काउंटेड रेट में कर सकेंगे। और इस फेयर का आयोजन कथोबोन में किया जा रहा है, गुदबास है, और यह आज सुबह 9 बजे से खुल चुका है, रात के 9 बजे तक, और कल भी 9 बजे से ये शुरू होगा और शाम के 6 बजे तक ये चलेगा। तो इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और जैसा कि हमारे दो मेहमान अनीश और विनीत जी कह रहे हैं कि इसके साथ साथ आज एक ब्लड डोनेशन का भी आयोजन हुआ है और फ्री हेल्थ चेक भी हो रहा है, तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए, ख़ास तौर पर अगर आप कथोबोन के आस पास में हो तो। और इस प्रोग्राम में अभी हम विस्तार से आपको और जानकारियाँ देंगे, फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: आज की चर्चा प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है PMEs यानी SMEs द्वारा आयोजित एक मेला, एक फेयर, एक सालों, और यह कैथोबोन में लग रहा है आज और कल। और इसके आयोजक समिति के दो प्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं, विनीत जगेसर जी और अनीश कुमार जी, जो कि हमें इस फेयर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। विनीत जी, आप हमें बताइए कि इस फेयर में मतलब कि जो व्यक्ति आएगा उसको क्यों आना चाहिए, और आप मतलब सिर्फ अपने आस पड़ोस के लोगों को देख रहे हैं या पूरे मॉरिशस को, और इस फेयर में जो भी मतलब कि जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी इसमें अपने सामान प्रदर्शित कर रहे हैं, वो पूरे मॉरिशस से आए हुए हैं या सिर्फ कैथोबोन इलाके से ही हैं वे?
1: नहीं, मैं आपको बोल सकता हूँ कि फर्स्टली जो ऑल जो एक्सपोजेंट हैं वो सिर्फ कैथोबोन बासा के नहीं हैं। हमको जैसे एप्लीकेशन मिला है ऑल ओवर मॉरिशस से, और एक बड़ी अच्छी बात ये है कि जो लोग कंज्यूमर्स बन के आएंगे वो भी सिर्फ बासा के नहीं हैं। हमको हमने एक वीक से हम जैसे सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कर रहे हैं, और हमको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे कौन सा प्रोडक्ट है, क्या नहीं है। तो मैं, अगर आप परमिट करते हैं, मैं एक लिस्ट देता हूं आपको कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल सकता है वहां पे। तो हमने बोला था इंडियन वेयर है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी जैसे कैंकरी प्रोडक्ट्स, अच्छा। जैसे इक्विपमेंट्स और जैसे पूजा आइटम्स, अगरबत्ती, पूजा सामान, कुर्ता, गिफ्ट शॉप, हमारे होम डेको। तो आजकल जैसे एंड ऑफ ईयर आ रहा है तो रिनोवेशन जैसे घर में चलता है तो ये सब मिलेगा। रेडीमेड गारमेंट्स, बेडशीट्स, घर बेडरूम का या सालों जो लिविंग रूम का जो आइटम्स है, और उसमें हमारा कोई एक्सपोजेंट वो भी है जैसे जैसे जो लाइक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स है, मेनवेयर, पूजा सामान, स्पाइसेस, स्वीट्स, जैसे अगर हमको स्कूल बैग्स चाहिए या ऑफिस बैग्स चाहिए तो यहाँ पर भी ये सप्लायर्स हमारे पास हैं। और अनीश ने अर्लियर बोला था कि मेडिकल फील्ड से जैसे जैसे मसाहिद

0: massage
1: or that's a special ointments, special teal, mithas, or बहुत सारे locally produced products भी मिलेंगे वहाँ पे. तो हमारा जो objective है, जो local SME हैं, जो small and medium enterprise, हमको उन्हों को motivate करना चाहिए कि और production करें, क्योंकि जो SME हैं हमारे ना, हमारे economy में बहुत major role play करते हैं. जैसे जैसे अगर मैं figures बोल सकता हूँ, जैसे हमारी GDP जो होती है उसमें 40% contribution है. और हो सकता है आपको और सरप्राइज होगा अगर मैं बोलूँगा कि 56% ऑफ आवर एम्प्लॉयमेंट जो
2: एम्प्लॉयर्स
1: हैं, SMEs आते हैं,
2: स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज.
1: तो अगर एक कंट्री को एक जैसे अपना प्रोग्रेस करना है तो इकोनॉमिकली
2: उसको लोकल सामान का कंसम्पशन करना,
1: प्रमोट SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर.
2: और जब COVID-19 चला था तब ये बहुत ये नारा काफ़ी मशहूर हुआ था, ईट लोकल, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वहाँ पर अगर आप ख़रीदारी करते हैं तो वो पैसे देश से बाहर जाते हैं, लेकिन अगर आप लोकल पैदावारों का सेवन करते हैं तो वह धन राशि जो है वो आपके ही देश में रहता है. और इस तरह से जैसा कि आपने कहा, आपका GDP वो स्टेबलाइज रहता है और आपका देश वो समृद्धि की ओर बढ़ता है. इसीलिए हर तरीके से ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने देश के लोगों ही द्वारा जो पैदावार प्रस्तुत किए जाते हैं, जो पैदा किए जाते हैं, आप उनका ही उपभोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रमोट करें. और अभी आपने एक बहुत विस्तृत लिस्ट प्रस्तुत किया जो कि हर एक इससे लाभ उठा सकता है. और आपने खाने पीने के सामान पर कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दी. क्या SMEs में हम देखते हैं कि अचार वगैरह बहुत ज़्यादा इसका पैदावार होता है, तो खाने पीने के कौन कौन से सामान यहाँ पर प्रदर्शित होंगे?
1: तो मैं सबको बोल सकता हूँ जो भी आ रहा है कि वीकेंड में किचन घर में खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक फूड कोना होगा.
2: अच्छा.
1: तो ऑल फूड आइटम्स जैसे होता है, तो जैसे किड्स कोना वगैरह भी होगा, तो आके बेनिफिट लें सब फैसिलिटीज का.
0: इसमें स्पेशल पिज्जा होगा, रोटी होगी, दाल पूरी होगा, स्पेशल पानी पूरी.
2: अच्छा.
0: स्पेशल पानी पूरी,
2: मॉरिशन
0: पानी पूरी, मॉरिशन स्टाइल में
2: जी.
0: बिरयानी होगा, वेज और नॉन वेज दोनों होगा.
2: जी हाँ.
0: जो नमकीन चाहते हैं वो पसंद करते हैं, जैसे आम, जनाना, कॉफी जो कहते हैं,
2: कॉफी
0: बहुत चटकार से
2: हाँ.
0: होगा.
2: अच्छा. और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसके पीछे आपने कहा कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने एप्लीकेशंस भेजे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि जो आयोजक समिति है इसके पीछे कौन कौन से ऑर्गेनाइजर्स हैं आपके कमिटी में, और उनकी विशेषता के बारे में आप हमें ज़रा बताइए.
1: तो ये काफ़ी जैसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक NGO ये प्रिपेयर करने में ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा. तो हम बासाएं पालमा में हम ऐसे काम करते हैं जैसे कोलाबोरेटिव काम. ओके. तो मैं
2: सबके सहयोग
1: तो डिफरेंट NGOs, तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पालमा नेबरहुड वेलफेयर एसोसिएशन, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ. और फॉर एग्जांपल भाई अनिश, वो 108 रेज के सेक्रेटरी हैं. तो हम काफ़ी दूर से पूरे साल साथ में काम करते हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं.
2: तो किस किस तरह के गतिविधियाँ आप आयोजित करते हैं?
1: तो हमारा सेट एक्टिविटीज़ है एवरी ईयर. जैसे हम शुरुआत करते हैं कावेदी, अब शुरू होता है तो सेवा करते हैं
2: जी.
1: फिर महाशिवरात्रि आती है, अभी में गणेश चतुर्थी का जो हुआ तो हमने भी पार्टिसिपेट करके सेवा की है, फूड डोनेशंस देते हैं हम. और अभी जैसे अब ब्लड डोनेशन ये पालमा नेबरहुड का हम मिनिमम 2 बार एक साल में ज़रूर करते हैं. हमारा ये सेट एक्टिविटी है
2: जी.
1: एक बार होता है मार्च में, एक बार होता है अराउंड दिस सितंबर पीरियड. तो पालमा नेबरहुड हम अगर आप मेरे को थोड़ा डिटेल्स दे सकता हूँ पालमा नेबरहुड वॉच, जैसे वो नाम ही बोलते हैं नेबरहुड वॉच. हमारा ऑब्जेक्टिव हमने शुरू किया था कि हमारे जो नेबरहुड हैं उसके सिक्योरिटी, उसमें सेंसिटाइजेशन, और हम गवर्नमेंट जैसे अथॉरिटीज़ से काफ़ी काम करते हैं, जैसे हम ब्रिज करते हैं बिटवीन हैबिटेंट्स एंड अथॉरिटीज़ लाइक म्यूनिसपालिटी, लाइक पुलिस स्टेशन. तो अगर कुछ जैसे क्वेरीज हो या कुछ डिलियंस जैसे बोलते हैं।

0: क्रियोल में,
1: या कोई समस्या हो,
0: जो कुछ समस्या हो, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें जो इनहैबिटेंट्स है वो अपना जो भी क्वेरिया डालते हैं, फिर हम लिएजन करते हैं जैसे पुलिस के स्टेशन के साथ या म्यूनिसिपैलिटी के साथ। तो हमने जब पलमा नेबरहुड शुरू किया था तो नेबरहुड वॉच से शुरू किया था, फिर ग्रेजुअली हम जैसे कम्युनिटी वर्क, सोशल
1: डाइवर्सिफाई होते गए।
0: फिर मैं पर्सनली हमारा पलमा नेबरहुड में, अभी अनिश 108 रेस का भी थोड़ा डिटेल्स देंगे, पलमा नेबरहुड में हम 8 कोऑर्डिनेटर्स हैं, और हमारा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आज 200 हाउसहोल्ड्स हैं। तो हम काफ़ी सोशल वर्क, काफ़ी कम्युनिटी वर्क करते हैं, और मैं जो वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पे पोस्ट में हूँ, तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एम्पावरमेंट में। तो मैं प्रोफेशन से एक अकाउंटेंट हूँ, और हाल ही में मैंने अभी एक जैसे इन कनेक्शन कॉम्प्लीमेंटरी टू माई रोल इन पलमा नेबरहुड, मैंने अभी एक लास्ट वीक एक लॉन्चिंग की है एक बुक की। तो इस बुक के द्वारा मैं एम्पावरमेंट करता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो फाइनेंशियल लिटरेसी, हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, और हम इवन लाइक कोर्सेस करते हैं जैसे यूथ के लिए, जैसे हो सकता है कम्युनिकेशन के ऊपर, हो सकता है जैसे पर्सनल डेवलपमेंट, हाउ टू राइट अ सीवी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। तो ये सब हम अपने रिसोर्सेज से जितना है हमारे पास हम हेल्प करते हैं लोगों को, कम्युनिटी वर्क।
1: और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में आप
2: थोड़ा मैं बता सकता हूँ। हर हम जो साउथ वेज हैं, हर त्योहार और नेचुरल कैलामिटीज के वक्त पर हम भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। भोजन बहुत इम्पोर्टेंट है,
1: खाना,
2: जैसे इस्कॉन के लिए फूड फॉर लाइफ, इससे इंस्पायर होकर हर त्यौहार जो आता है, और स्पेशल कोविड में हम लोगों को जैसे राशों कहते हैं
1: जी,
2: घर घर तक
1: भेजते
2: पहुंचाते थे, ये हमारा स्पेशल है
1: जी। और फिर
0: और हमारा और दूसरे एनजीओज हैं साथ में जो देते हैं, हमारा एक और पार्टनर है नेहरू शिक्षा भवन, तो बासन रोड में आज जो एक्टिविटी है
1: वो
0: तो
1: वहीं पर हो रहा है।
0: हाँ, वहीं पे हो रहा है, और उन लोगों ने हमको जैसे लॉजिस्टिक्स दिया, जैसे उसकी जहाँ पे ब्लड डोनेशन, रक्तदान जो हो रहा है आज, उनके प्रीमाइस में हो रहा है।
1: अच्छा।
2: और जब हम सुशल कल्चर कर रहे हैं, हमें एहसास हुआ कि हर 3 घर में एक बिजनेस है, एक एंटरप्रेन्योर है, वो टिकटॉक और फेसबुक में अपना प्रमोशन
1: बेचते
2: हैं, लेकिन अगर कुछ लोग उस सामान को जैसे बेडशीट को मोबाइल में देकर और
1: पता नहीं चलता है, हाँ, कि डिलीवरी चलती है।
2: जैसे मैं लड्डू की बात कर रहा हूँ, दिवाली के समय पर हम देखेंगे, लेकिन अगर आज आप इस प्रोडक्ट चखेंगे, बेडशीट को क्वालिटी देखेंगे, तो ये
1: इससे आपको पता चलेगा कि इनका इनकी पैदावार कैसी है,
2: कैसे ही
1: है। जी हाँ। और फिर ये एक प्लेटफॉर्म भी है कि उन लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया पर अपने सामान बेच रहे हैं, और सभी लोग तो सोशल मीडिया पर नहीं होते,
2: नहीं है, हमारे दादी लोग वो सोशल मीडिया से वो देखते हैं, फेसबुक है,
1: लेकिन खरीदारी नहीं
2: कर सकते हैं
1: जी। तो यहाँ एक मौका है उन लोगों के आने का। बहुत अच्छा,
2: बहुत फ्रोजन प्रोडक्ट हुआ।
1: अच्छा,
2: जैसे कि आप समोसा है, स्प्रिंग रोल है, टिका है,
1: यस,
2: और बनाना चिप्स,
1: कसावा चिप्स,
2: हाँ। ये सब वहाँ पर।
1: अच्छा,
2: आप टेस्ट कर सकते हैं,
1: और ये डिस्काउंटेड प्राइस में हो।
0: और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एनवायरनमेंट
1: जी।
0: तो हम जैसे पलमा नेबरहुड में एवरी ईयर एनवायरनमेंट डे करते हैं, तो फिर हम म्यूनिसिपैलिटी के हेल्प से हमारा जो लोकेलिटी है सब लोग आके हेल्प करते हैं कि साफ करो
1: जी। हाँ।
0: और ये पीएमई फेयर में हम देखेंगे कि 16 पैनल, 16 वाटर हीटर सप्लायर भी आया हुआ है।
1: अच्छा।
0: तो ये हम प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये 16 एनर्जी यूज करके हम एनवायरनमेंट को भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं।
1: और हम देख रहे हैं कि ये दुनिया भर में रिसेशन का दौर चल रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन बहुत भारी पड़ रहा है, तो फिर इस 16 एनर्जी, 16 वाटर हीटर के बारे में किस किस तरह से DBM भी इसमें शामिल हो रहा है, अभी हम थोड़ी देर में इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: आज की चर्चा में आज जैसा कि आपको पता चल गया हम SMEs फेयर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि क्वाट्रो बोन में चल रहा है आज और कल। आज सुबह 9 बजे से ये शुरू हो चुका है, रात्रि के 9 बजे तक ये चलेगा और कल भी ये 9 से 6 बजे तक चलने वाला है। और इसमें सामानों की बिक्री तो होगी ही, लेकिन ये सामान छोटे और मध्यम उद्योग जो कि मॉरिशस के हैं उनके द्वारा पैदा किए गए हैं। और साथ ही साथ कई अन्य गतिविधियां चल रही हैं, जैसे कि आज ब्लड डोनेशन है और फिर ब्लड डोनेशन के अलावा कई और गतिविधियां चलाई जाएंगी। और अभी विनीत जी आप बता रहे थे कि इसमें 16 वाटर हीटर भी इसकी बिक्री होगी और इसके लिए DBM द्वारा जो ग्रांट, जो फैसिलिटीज़, जो सुविधाएं उपलब्ध हैं इस पर भी जानकारियां दी जाएंगी, तो ज़रा इसके बारे में हमें बताइए।
1: तो आज हमारे बीच एक एक्सपोजों DBM भी आया हुआ है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस। तो इसमें नॉट ओनली अबाउट ग्रांट्स बट ऑल्सो जो PME जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको फाइनेंसिंग चाहिए, जैसे माइक्रो लेंडिंग,
0: जी हाँ,
1: तो वहाँ पे एक स्टॉल है। तो वो लोग वहाँ पे सब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे लोन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है,
0: मतलब कि अगर आप भी ऐसा एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद होंगे आज, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इन सभी पर जानकारी देने के लिए DBM वहाँ पर उपस्थित होगा।
1: न्यू और एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर के लिए भी वहाँ पे
0: अच्छा
1: इन्फॉर्मेशन मिलेगा।
2: और DBM के साथ एक स्मार्ट फाइनेंस भी होगा, वो एक गिड है जो होता है एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर गलती करता है, कैसे कैश को जनरेट करते, को हैंडल कर सकते,
0: क्योंकि उसको पता नहीं होता,
2: पता नहीं होता। जैसे मैं भी लास्ट ईयर करता हूँ, तो कैश को कैसे हैंडल करते हैं, इसका एक गिड होगा स्मार्ट फाइनेंस।
0: अच्छा।
2: और इसके अलावा बच्चों के लिए स्पेशल रविवार को 2 बजे मैजिक शो होगा और बच्चों के लिए आइसक्रीम भी डिस्काउंटेड रेट में, ये स्पेशल
0: वो भी मतलब कि फेमेजो होगा आइसक्रीम भी।
2: हाँ, फेमेजो है,

0: जैसे कुल्फी मलाई
1: जी हाँ,
0: ऐसे भी कुछ सामाजिक होगा।
1: अच्छा,
0: और एक आप जो पहपेत लवा होगा वो एमसो आ रहा है अपने कुत्ते को अडॉप्ट करने के लिए।
1: अच्छा, मतलब कि अगर आप एक पेट पाना चाहते हैं, अगर एक कुत्ता अडॉप्ट करना चाहते हैं, पप्पी हो या डॉग हो, तो आप वहाँ जा सकते हैं। एमसो अपने पेट्स के साथ आएंगे, अपने पप्पीज और डॉग्स के साथ आएंगे, और आप वहाँ पर मेरे ख्याल से आप सिर्फ एक ऐसा फी चुकाना चाहिए जिससे कि उनका स्टेरिलाइजेशन कवर हो सके, और फिर ये फ्री होता है।
0: फ्री होता है और आईडी
1: लाना चाहिए
0: जी, क्योंकि वो डीबीएम और एसएमई एमसो वो आईडी मांगते हैं।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया। और विनीत जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे?
2: मैं थोड़ा ब्लड डोनेशन के बारे में, ब्लड दान के लिए थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो पहले जब ब्लड डोनेशन होता था तो बोलते थे गिव ब्लड सेव अ लाइफ, पर आजकल जो ब्लड देता है वो उसके लिए भी, उसके हेल्थ और सेहत के लिए अच्छा होता है। तो हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल, और ब्लड बैंक से हमको काफ़ी रिक्वेस्ट आता है कि हम एनजीओज हैं जो हम एवरी ईयर जो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ब्लड बैंक हमको एनकरेज करता है कि जैसे करीब इस वक्त जो है एंड ऑफ ईयर इम्पोर्टेंट होता है कि ब्लड बैंक में वो लोग अपना लाइक डोनेशन करके अपना ब्लड बैंक का स्टॉक
1: ज़रूर
2: ऊपर करें। और तो मैं सभी लोगों को बोलूँगा जो हमारे एग्जिस्टिंग ब्लड डोनर्स हैं, जो बासाएँ कैट्रोबोन और दूसरी जगह से भी जो आते हैं, कि वो आएँ। आज 3 बजे तक होगा ब्लड डोनेशन, और 12 बजे तक हमारा स्क्रीनिंग भी है, जैसे मेडिकल स्क्रीनिंग, बेसिक BMI, जैसे हेल्थ चेक, तो ये सब उसका फैसिलिटी होगा वहाँ पे
1: ज़रूर।
0: और शादी का सीजन आ रहा है
1: जी,
0: अक्टूबर नवंबर दिसंबर,
1: अभी पितृपक्ष के बाद शादी भी शुरू हो जाएगी,
0: जब नवरात्रि के बाद शादी हाँ। शादी का सीजन होता है
1: जरूर।
0: तो के डिजाइनर भी आ रहे हैं, आपको हल्दी गीत गवाए, माँ बच्चे बाप बच्चे एक कॉमन क्लोवर्स डालते हैं ना
1: जी हाँ, जैसे आजकल तो
0: कॉम्बिनेशन
1: जी हाँ, थीम रखे जाते हैं और फिर मैचिंग
0: डिजाइनर
1: होता है,
0: ये स्पेशल होगा।
1: अच्छा,
0: साड़ी को बहुत डिस्काउंट, तो स्त्री वाले औरत जैसे लेडीज बहुत को पसंद आएगा।
1: अच्छा,
0: उनके एक्सेसरी जो
1: हाँ,
2: ज्वेलरी
0: जानू लासन सब रिलेटेड थिंग्स,
1: ओके,
0: शादी के लिए स्पेशल।
1: बहुत बढ़िया। और फिर अभी आपने जब डीबीएम के बारे में कहा, तो क्या डीबीएम के साथ साथ कोई और इस तरह के मतलब कि कोई और इंस्टीट्यूशन भी इसमें शामिल होगा?
2: हाँ, और इंस्टीट्यूशन है, जैसे स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन भी आ रहा है, वहाँ पे वो अपना प्रमोट करेंगे, जैसे जो इम्पोर्टेड राइस जो यहाँ पे मार्केट में बेचते हैं और अदर प्रोडक्ट्स, और
1: शायद एसटीसी का वहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो जगहों है इसकी मांग अभी काफ़ी बढ़ चुकी है।
2: हाँ, और हो सकता है वो आज एक न्यू ब्रांड राइस का भी लॉन्चिंग करेंगे, तो हमने सुना है, तो अभी हमको कन्फर्मेशन नहीं मिला, तो ये भी होगा। और साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है फारी, जो एग्रो मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये फारी जैसे जो एंटरप्रेन्योर जो घर में बनाते हैं जैसे फूड आइटम्स,
1: जी हाँ,
2: उनको ट्रेनिंग देता है कि अगर अचार बना रहे हो तो कैसे प्रिजर्व करना है।
1: अच्छा,
2: अगर प्लांटेशन कर रहे हो तो कोर्सेज देता है कि क्या व्हाट इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ यू नो होम गार्डनिंग, और हाउ टू प्रिजर्व होम मेड फूड फॉर टू बी सोल्ड।
1: और ये सभी कुछ फ्री होगा?
2: ये सब फ्री है
1: जी,
2: तो आके लाभ लेना चाहिए ये सब का
1: जरूर, क्योंकि हमको पता है कि हमारी माएँ हमारी चाचियाँ उनको बहुत पसंद है अचार वगैरह डालना, लेकिन देखते हैं कि जैसे ही इसको तैयार किया फिर 2 दिन बाद ये खराब पड़ जाता है, या फिर होम गार्डनिंग के लिए बहुत से उनकी ओर से इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन देखते हैं कि वो बीज अंकुरित होने के बाद ही वो मर जाता है, या फिर जो उनकी उम्मीदें थी वो नहीं पूरी हो पाती। तो यहाँ पर एक मौका है जहाँ पर फागे आपको, एक तो आप अपनी ख़रीदारी कर पाएंगे, हेल्थ चेक कर पाएंगे, खाने का भी कॉर्नर होगा, और फिर आपको टिप्स भी मिलेगा कि आप होम गार्डनिंग को कैसे सफल बना पाएं जी। और हम प्रोग्राम की समापन की ओर थोड़ी ही देर में बढ़ेंगे, और इस समापन के पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे।

0: आज की चर्चा प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एक एसएमईस फेयर का जो कि आज और कल चल रहा है काठोबोन में, और इसके दो प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, अनीश जी और विनीत जी। विनीत जी, अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं या फिर जो शुरू कर रहे हैं कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप, एक छोटा या मध्यम उद्योग, उन्हें ज़रूरत है एक गाइडेंस की, एक मार्गदर्शन की कि किस तरह से वे अपना निवेश कर सकें अपने बिजनेस में और फिर किस तरह से मुनाफा कमा पाएँ। इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक जो ज्ञान है वो बहुत ज़रूरी होता है, और आप लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में भी यहाँ पर कोई गाइडेंस होगा, ज़रा इसके बारे में हमें बताएं।
1: जो एजुकेशन और एम्पावरमेंट है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है गाइडेंस।
0: जी हाँ,
1: तो हमने अपने फेयर में एक स्मार्ट फाइनेंस फॉर एंटरप्रेन्योर कॉन्सेप्ट रखा है। वो क्या है, हम देखते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपनी बिजनेस में, अपनी लॉजिस्टिक्स में, अपने ऑपरेशंस में बहुत इंटेलिजेंट है।
0: जी।
1: पर स्टैटिस्टिक्स ये भी बोलता है कि हमारे एंटरप्रेन्योर फाइनेंशियल लिटरेसी में थोड़ा सा
0: कमजोर।
1: हाँ, तो ये एक वीक पॉइंट है।
0: जी।
1: सिंपल थिंग्स होती है, कैश फ्लो मैनेजमेंट, जैसे देखो अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, एक स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस कैसे शुरू करना चाहिए, एक कंपनी के द्वारा या सोल ट्रेडर के द्वारा, और कैपिटल जैसे कैसे रेज करें। अब अगर आपको इक्विपमेंट फाइनेंस करना है तो कौन से मूड से फाइनेंस करें, एक लीसिंग लोगे, एक लोन लोगे, या अपने पर्सनल कैश से करोगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है इंग्लिश में जो बोलते हैं, वट एवर गेट्स रिटन गेट्स डन। सो बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनी बिजनेस, स्पेशली द स्मॉल एंड मीडियम वंस, उनको अपना जैसे फोकस एंड बजटिंग
0: पहले से कर लेना चाहिए।
1: हाँ, फिर जब एक्चुअली जब टाइम पास होता है, जब अपना परफॉर्मेंस जब आप अप्रेज करते हो, तो आपके पास एक बेंचमार्क होगा कि मैंने जैसे बजटिंग की थी कि मैं 3 महीने में मेरा सेल्स होगा दैट मच ऑफ मनी, पर मैं थोड़ा शॉर्टफॉल हो गया हूँ। हाँ। या मैंने अपने बजट से ज़्यादा किया है।
0: जी।
1: तो ये सब स्मार्ट फाइनेंस फॉर एंटरप्रेन्योर, वहाँ पे हम एक जैसे गाइडेंस हम देंगे अपने एंटरप्रेन्योर को, ताकि एक बैलेंस हो अपने बिजनेस में और साथ में फाइनेंस मैनेजमेंट के साथ में भी।
0: जी हाँ।
1: तो इसके ये प्लेटफॉर्म के द्वारा जो 2 दिन आ रहे हैं, तो हम वहाँ पे ये सब काउंसल करेंगे, नॉट ओनली फॉर पीपल कमिंग बट ऑल्सो फॉर ऑल द एक्सपोजेंट हु आर देयर।
0: जरूर।
1: सो वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो अस एज एन एसोसिएशन वी आर गोइंग टू हेल्प।
0: क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि कोई एक बिजनेस शुरू करता है बहुत उत्साह के साथ, बहुत उम्मीद के साथ बिजनेस शुरू होता है, चलने लगता है, फिर अचानक देखते हैं कि वो बंद हो गया। तो इसके लिए जैसा कि आपने कहा, फाइनेंशियल जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और हम प्रोग्राम के अंत तक लगभग पहुँच चुके हैं, हमारे पास 2 मिनट है। हम चाहेंगे कि आप हमें आखिर में अपना संदेश दें कि क्यों ज़रूरी है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, क्यों ज़रूरी है हमारे देश की जनता को ऐसे छोटे मध्यम उद्योगों को प्रमोट करना, उनके पास जाकर ख़रीदारी करना, एंटरप्रेन्योर को कैसे हम उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं, ज़रा इसके बारे में बात करते हुए हम प्रोग्राम को समाप्त करेंगे।
1: बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर, जैसे मैंने बोला था कि वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इकोनॉमी में, तो ये प्लेटफॉर्म के द्वारा हम उन लोगों को विजिबिलिटी देते हैं, जैसे अपना प्रोडक्ट्स लाओ, अपना मार्केटिंग करो और साथ ही साथ अपना बिजनेस बढ़ाओ। क्योंकि हम जब हम एक एंटरप्रेन्योर से कुछ बाय करते हैं तो हम एक फैमिली को हेल्प कर रहे हैं बिहाइंड, तो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा यही मैसेज है कि SME शुड बी प्रमोटेड एंड मोटिवेटेड।
0: ज़रूर।
2: एंटरप्रेन्योर SME देश के भविष्य हैं। कल्पना कीजिए, हर घर में एक एंटरप्रेन्योर है।
0: जी हाँ।
2: इसका कैश फ्लो कैसा इम्पोर्टेंट होगा बजट के लिए।
0: जी।
2: तो हर घर में जैसे तैसे, चाहे वो स्मॉल हो, लड्डू से, चाहे मिलियन हो, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए,
0: ताकि जब जहाज का आना जाना बंद हो जाए इस दुनिया में, COVID-19 जैसी स्थिति पैदा हो जाए, तो हमें भूखा ना रहना पड़े, हम फिर भी अपने देश को चला पाएंगे, हम हर घर में खाना होगा और हर एक का हम सहयोग कर पाएंगे। विनीत जी, अनीश जी, आप लोग आज सुबह सुबह अपना फेयर छोड़कर यहाँ पर आए, अपने फेयर के बारे में जानकारी देने के लिए, छोटे मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद,
1: धन्यवाद
0: और बहुत बहुत शुभकामना।

0: Hello everyone, I'll check your time. शाम के ठीक 4 बजे हैं. आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ. आपको नमस्कार.
1: नमस्कार. 4 बजे की समाचारों में स्वागत है आप सभी का. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मॉरिशस ने छोटे टापू देशों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठाया है. विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार और नई तकनीकों पर भी बात की. उन्होंने फिलिस्तीन, शागुस और थोमलैंड का मुद्दा भी उठाया. अपनी आगामी ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलने वाले हैं. बातचीत में शागुस समझौते की पुष्टि से जुड़े हाल के घटनाक्रम पर चर्चा हुई. ये जानकारी कल मंत्रिमंडल के फैसलों में दी गई. प्रधानमंत्री ने 21 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से फोन पर बात की थी. शागुस समझौते पर 22 मई 2025 को हस्ताक्षर हुए थे. इसकी पुष्टि के लिए ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पारित होना था. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को लेकर आपत्ति जताई है. न्यूयॉर्क में ब्रिटिश विदेश मंत्री और मॉरिशस विदेश

0: मंत्री के बीच मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन, मॉरिशस और अमेरिका तीनों के लिए स्वीकार्य समाधान तलाशने की इच्छा ब्रिटिश सरकार ने दोहराई है। मॉरिशस सरकार के अनुसार शागुस पर मॉरिशस की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं है। अब पशुओं के आयात से जुड़ी खबर। नामीबिया में फुट एंड माउथ डिजीज का मामला सामने आने के बाद मॉरिशस ने वहां से मवेशियों का आयात रोक दिया है। कारसबर्ग के एक व्यावसायिक फार्म में जिन 11 मवेशियों में बीमारी के लक्षण दिखे थे उनमें से 10 की जांच 23 सितंबर को पॉजिटिव आई है। दक्षिण अफ्रीका के बाद नामीबिया दूसरा देश है जहां से मवेशियों के आयात के परमिट निलंबित किए गए हैं। फिलहाल केन्या ही ऐसा देश है जहां से मवेशियों के आयात को पशु चिकित्सा सेवाओं की मंजूरी मिली है। पोटली में 19वां चाइना टाउन फूड एंड कल्चर फेस्टिवल आज से शुरू हुआ है। 2 दिन के इस आयोजन में चीनी खान पान, संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। आयोजकों के अनुसार इस साल 18 ग्रुप भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में ड्रैगन डांस, संगीत और दूसरी प्रस्तुतियां शामिल। विदेश स्तर की खबरों में फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा को अमेरिका में एक और कानूनी झटका लगा है। न्यू मैक्सिको के एक जूरी ने माना है कि फेसबुक ने लोगों को उनके निजी डेटा के इस्तेमाल के बारे में गुमराह किया। ये मामला कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद से जुड़ा है। 2018 में सामने आई इस विवाद ने दिखाया था कि फेसबुक के करोड़ों उपयोगकर्ताओं का डेटा उनकी जानकारी के बिना राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6 बजे एक पूरे समाचार बुलेटिन के साथ। Your news on MBC Play and MBC.MU.
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं और M3

रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को भाई संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम इन गीत गाथा देश की। आज भी हम अपने देश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, आज भी हम अपने इतिहास के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सुनेंगे। आज हम एक बगीचे को ढूंढ रहे हैं, यस आज हम एक बगीचे को ढूंढ रहे हैं और इस बगीचे के साथ हमारे देश के एक वरिष्ठ नेता का नाम जुड़ा हुआ है। सो फर्स्ट टिप एक बगीचा, दूसरा टिप उस बगीचे के साथ हमारे देश के एक वरिष्ठ नेता का नाम जुड़ा हुआ है, तीसरा टिप इस बगीचे की स्थापना सन 1870 जी हाँ 1870 में इस बगीचे की स्थापना की गई, उन पौधों को कल्टीवेट करने के लिए जो देश के गर्म इलाकों में नहीं बोए जा सकते थे। सो इतने टिप हमने आपको बताया, आप हमें फोन करके बताएं उस बगीचे का नाम जिसे हम ढूंढ रहे हैं और 402 80 70 पर।

0: गीत गाथा देश की। आज हम हमारे अपने देश के एक बगीचे को ढूंढ रहे हैं। इस बगीचे के साथ हमारे देश के एक वरिष्ठ नेता का नाम जुड़ा हुआ है। इस बगीचे की स्थापना सन 1870 में की गई, उन पौधों को कल्टीवेट करने के लिए जो देश के गर्म इलाकों में नहीं बोए जा सकते थे। चले, इन सभी जानकारियों के साथ इनके पास क्या जवाब होगा सुनते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते संजय जी।
0: नमस्ते उमा जी। उमा जी, आप एक्वायर के रहने वाली हैं? हाँ कि नहीं? हाँ, एक्वायर के रहने। आपके पास जवाब क्या है?
1: हाँ, पम्प्रेमुसेस बोटानिकल गार्डन और जो सेसी सागर, अब सेसी सागर राम गुलाम बोटानिकल गार्डन से जाना जाता है।
0: उमा जी, हम आपसे पूछ सकते हैं, आप रहती हैं एक्वायर?
1: यस।
0: और एक्वायर में अभी गर्मी शुरू हो चुकी है?
1: हाँ, अब कुछ दिनों से रात को गर्मी महसूस हो रही है। हाँ,
0: ओके, आप हमें बताएं, आपने जवाब दिया पॉपलमुसेस
1: जी।
0: पॉपलमुसेस में गर्मी होती होगी
1: जी? हाँ
0: हाँ। तो हमने कहा कि इस बगीचे की स्थापना सन 1870 में की गई, उन पौधों को बोने के लिए जो गर्म इलाकों में नहीं बोए जा सकते थे। और आपने जवाब दिया पॉपलमुसेस एसएसआर बोटानिकल गार्डन। सो जो बगीचा हम ढूंढ रहे हैं वो पॉपलमुसेस एसएसआर बोटानिकल गार्डन नहीं, लेकिन आपने भाग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी। नमस्कार। जय मॉरिशियस।
1: जय मॉरिशियस।
0: त्रियुरे की सिमला भी, उन्होंने भी यही जवाब दिया, पॉपलमुसेस एसएसआर बोटानिकल गार्डन जिस बगीचे को हम ढूंढ रहे हैं वो ये नहीं है। लेकिन भागने लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में उस बगीचे के बारे में थोड़ी और एक और टिप हम आपको देने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो मनोरंजन गीत कथा देश की, संजय के साथ।

सो अपने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आपको देते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. इनिशियली 27 acres के इस बगीचे में अनेक प्रकार के एक्सोटिक फल के पौधे लगाए गए थे. बाद में मॉरीशस के एंडेंजर्ड एंडेमिक प्लांट्स को भी वहां पर आश्रय मिला.

0: 4:22 गीत गाथा देश की रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। और आज हम विशेष का एक बहुत ही फेमस बगीचा ढूंढ रहे हैं, चले हम इनसे मिलते हैं। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: नमस्कार संजय भाई।
0: सूर्यदेव जी।
1: हाँ सूर्यदेव है।
0: और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: लालमाची से जी।
0: लालमाची से बोल रहा था। और तोहर पास कौन जवाब बांटे?
1: बालफू
0: कहाँ पर पाया जा रहा?
1: बोबासन
0: रोजिल बोबासन के बाउंड्री पर। और उकर बगल में एक वो नदी बाते ग्रांड रिवियर नॉर्थ वेस्ट। हाँ इस सच है कि बालफू बगीचे के साथ बालफू नाम जुड़ल गल बाटे, लेकिन हमने अब ये बोला वहाँ पर गर्मी होला कि ठंड होला? बालफू में गर्मी होला कि ठंड होला? गर्मी होला। और हमने ये बोलनी जा कि जब वो बगीचे की स्थापना होल तो ऐसे प्लांट बोए खातिर जो गर्मी नहीं सकेला सहे। हाँ तो जो बगीचा है न वो पापड़ी मुसेस के एस एस बोटानिकल गार्डन है और ना ही रोजेल के बालफू गार्डन है। अच्छा सूर्यदेव जी अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपने साथ निभाया। सो आखिर हम किस बगीचे की बात कर रहे हैं? आप भी अपनी बुद्धि को दोहराए और हमें फोन कीजिए। उनका सौंदर्य का तो मैं सुन जी

और आए और हमें फोन कीजिए उनका सौंदर्य का तुम्हें सुन जिस उसी बगीचे को लेकर रखा गया। नाउ गेस कीजिए हम किस बगीचे की बात कर रहे हैं।

किसान गीत गाथा देश की। आज काफी फोन कॉल्स आ रहे हैं ऑन 4290 4290, लेकिन हमें खेद है एक टेक्निकल इशू की वजह से हम आपके फोन कॉल्स को नहीं ले पा रहे हैं, और जब कुछ समय के लिए ले भी रहे हैं तो कॉल ज़्यादा समय टिक नहीं रहा है, सो वी आर नॉट बीइंग एबल टू टॉक टू यू एंड टू टेक यू ऑन एयर। लेकिन खराबी आने से पहले वी वर टॉकिंग टू भाई राजीव रामफल जी, जो वारदेपत के रहने वाले हैं और बहुत ही प्यार से बहुत ही याव के साथ प्रोग्राम को सुन रहे थे, एंड ही वाज एनालाइजिंग द डिफरेंट इंटरवेंशंस और उन्हें सही जवाब मिल भी गया। सो बधाई हो राजीव रामफल जी, आपने सही जवाब दिया, और कुछ अन्य लोगों ने भी मैसेज के जरिए हमें सही जवाब दिया। But we still would like to bring some more, give some more information about the बगीचा जिसके बारे में आज हमने विषय रखा है। So इस बगीचे में एक नदी, इस बगीचे में से एक नदी गुजरती है, और बगीचे में एक झील भी है, और इस बगीचे की एक खासियत, one specificity, one main attraction, वो ये है कि दुनिया का सबसे दुर्लभ, दुनिया का रेयरेस्ट पाल्म ट्री, अ यूनिक स्पेसिमेन ऑफ यूफोब अमेरिकोलुस, यूफोब अमेरिकोलुस,

सो उस बगीचे में ये यूनिक स्पेसिमेन ऑफ पॉल्म ट्री पाई जाती हैं। थोड़ी देर में हम खुद आपको बताएंगे कि किस बगीचे की बात हो रही है। जितने भी लोगों ने कोशिश की और अभी तक कोशिश कर रहे होंगे, यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस ऑन 52 50 62 00 थ्रू व्हाट्सएप।

चार बजकर 37 मिनट रेडियो मनोरंजन के लहरों पर प्रोग्राम गीत गाथा देश की। ये प्रोग्राम हर शनिवार की शाम को चलता है 4 से लेकर 5 बजे तक, और हर एक सप्ताह हम एक ऐसे विषय रखते हैं जिसके जरिए आप अपने देश के बारे में जरा कुछ जान पाएं। आज हम एक बगीचा ढूंढ रहे हैं जिस पर हमने जिसके बारे में हमने आपको अनेक टिप्स इंफॉर्मेशन दिए हैं। इस बगीचे के साथ हमारे देश के एक वरिष्ठ नेता जी का नाम जुड़ा हुआ है। इस बगीचे की स्थापना सन 1870 में

की गई उन पौधों को कल्टीवेट करने के लिए जो देश के गर्म इलाकों में नहीं बोए जा सकते थे। इनिशियली 27 एकड़ 27 एकर्स के इस बगीचे में अनेक प्रकार के एक्जोटिक फल के पौधे लगाए गए, लेकिन बाद में बुशेस के एंडेंजर्ड एंडेमिक प्लांट्स को भी वहां पर आश्रय मिला। फिर हमने आपको बताया कि इस बगीचे को लेकर उस शहर की एक गली का नाम रखा गया है और उसके बाद इस बगीचे में एक नदी गुजरती है, एक झील भी है और इस बगीचे की ये एक खासियत है कि वहाँ पर वो एक मेन अट्रैक्शन दुनिया का सबसे दुर्लभ द रेयरेस्ट पाम ट्री यूनिक स्पेसिमेन ऑफ यूफोब अमेरिकुलिस जिसको प्रोपागेट करने की भरसक कोशिश की जा रही है लेकिन जो अभी तक असफल रही है। और जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं, मिड 80s में देश के राष्ट्रपिता के गुजर जाने के बाद इस बगीचे को उनका नाम दिया गया। सो और भी सफल अभी तक 3 नाम दर्ज हो चुके हैं फॉर हैविंग गिवन द राइट आंसर। श्री राजीव रामफल जी फ्रॉम बालदीप्रेत, श्रीकेश जयराम जी और कुतेज की आशा जानू ने भी सही जवाब दिया। आप भी अपना नाम इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं by sending me a WhatsApp message on 52 50 62 00.

4:41। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में इतनी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए। अफसोस हम आपके फ़ोन कॉल्स लाइव नहीं ले पा रहे हैं, नहीं तो हम जानते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत से लोग हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेते हैं।

राजीव रामफल के साथ साथ केश जयराम जी, आशा जानू जी, एक वायो की उमा जी, और अभी भी रुद्बा शंकर बोन की माला जी ने भी, माला सिसाई जी ने भी सही जवाब दिया। और उन्होंने ये भी जुड़ा कि उस बगीचे में एक क्योस्क है, एक सफ़ेद क्योस्क जिसका एक विशेष नाम भी होता है, जहाँ पर वीकेंड में प्रोग्राम किए जाते हैं, किए जाते थे एटलीस्ट। सो साथ ही साथ आपको ये भी बोल दें कि पॉम्पलेमूसेस एसएसओ बोटानिकल गार्डन्स के बाद, जी हाँ, पॉम्पलेमूसेस एसएसओ बोटानिकल गार्डन के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बगीचा है, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बगीचा है। नाउ इट शुड बी क्वाइट इजी फॉर मेनी टू गेस कि हम किस बगीचे की बात कर रहे हैं। हम हमेशा जब बोटानिकल गार्डन्स की बात करते हैं तो वी थिंक अबाउट ऑब्वियसली अबाउट पॉम्पलेमूसेस, लेकिन ये भी एक ऐसा बोटानिकल गार्डन ही है। छोटा है लेकिन उतना ही खूबसूरत, उतना ही मनमोहक। यू कैन स्टिल सेंड मी योर मैसेजेस ऑन 5250 6200।

इस बगीचे के बगल में जो इलाके हैं उनमें आता है कोंकावाल और काजेन और बेशक वहां पर से थोसेफ

0: चलें अब आखिर में लाइन को थोड़ा सा सुधार पाए हम। चलें हम मिलते हैं इनसे। हेलो
1: भैया, नमस्ते।
0: नमस्कार रंजन जी।
1: रंजन
0: हाँ, ये तोहर लुटतरी है कि तोहर कोल आगल। हाँ रंजन जी बोला।
1: जौदे कैपी भैया,
0: जौदे वो जौदे नहीं, जौदे एसएसओ बोटानिकल गार्डन्स कुरपिप। और हमेशा जब हमने एस एस ओ बोटानिकल गार्डन की बात करी राजा तो सोची राजा की पॉपलेमूस। एक और बात है, एस एस ओ बोटानिकल गार्डन क्यूरपे जो मॉरिशस के फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट और म्यूनिसपैलिटी ऑफ क्यूरपिप दोनों मिलकर चलावे रंजा। फिर से बोला डिस्ट्रिक कोर्ट वही रास्ता में बात है। हाँ वही रास्ता में बात है, कॉलेज वायर के बगल में। हाँ तो जो रास्ता निकलता है शातोनफ से, फिर गुजरात बनकर वही जाता है एसएसओ बोटानिकल गार्डन तक। आप पिछली बार वहाँ पर कब गए थे?
1: क्यूपी में काम करता था ना।
0: अच्छा, क्यूपी क्यूपी के किस भाग में काम करता था?
1: कोर्ट
0: में काम करता। अच्छा,
1: लाकू
0: में काम करता था, इसीलिए आपको पता है।
1: है?
0: हाँ तो जन बोले के रहा कि

0: सीमा ज्यादा कंकवाल
1: कंकवाल
0: हां
1: और सेफ उस सब भीड़ का
0: हां और एगो एगो भौंस जला तू सेफ पर ऊपर में
1: हां वहां पर चिकन के तिबा सुबह मौसे
0: फिर से बोला
1: चिकन सुबह मौसे
0: हां ये सब बाद में आवेला ये तो रूट रॉयल में आवेला बात ये है कि जब शिवरात्रि होती है और जब लोग कोविल जाते हैं तो वहाँ पर ठहरते हैं वहाँ पर आराम करते हैं और बहुत प्यारा नज़ारा है और जब ये सब त्यौहार आते हैं तो जितने लोग वहाँ पर जाकर आराम करते हैं तो और भी मनमोहक और भी खूबसूरत बन जाता है और ये सब जानकारी हमें महाराज जी ने बताया क्योंकि महाराज जी कंकवाल में जन्मी और वहीं पर वो बरी हुई इसीलिए उनको सब कुछ पता है सौरंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने साथ निभाया ओके आप फिर से मिलब जा जय मॉरिशियस
1: जय मॉरिशियस
0: जय मॉरिशियस सो जिस बगीचे की बात कर रहे थे आज वो हैं एसएसओ बोटानिकल गार्डन्स ऑफ क्यूरपिप जहाँ पर द रेयरेस्ट पाम ट्री पाया जाता है एक ही नमूना है पूरे पूरे विश्व में एक ही नमूना है हियोफोब अमेरी कुलिस और वो सिर्फ क्यूपिप के बोटानिकल गार्डन्स में पाया जाता है चलते चलते हम भाई गोपाल जो वहाँ के निर्देशक हैं और भाई गोविंद जी जो वहाँ पर काम करते हैं दोनों को सलाम करते हैं और वहाँ के सभी जो लोग वहाँ पर काम करते हैं आप सबों को सलाम करते हैं ऐसे ही देश के बारे में और ऐसा ही प्रोग्राम लेकर हम हाजिर होंगे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों को हम सलाम करते हैं आपके लाजवाब काम के लिए और हमारे देश की विभिन्न एंडेमिक स्पीशीज को सुरक्षित रखने के लिए सो यहाँ पर आज का गीत कथा देश के प्रोग्राम समाप्त होता है हमारे बाद पूनम जी आपका साथ निभाने आएंगे हमारी अगली मुलाकात रेडियो मनोरंजन के लहरों पर अगले गुरुवार की शाम को राम रसधारा में तब तक आज्ञा दीजिए नमस्कार आदाब जय मॉरिशियस

0: पुराने नगमे।
1: नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 5:10 हो चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ पूनम, और आप सुन रहे हैं पुराने नगमे। आज बात उस एक्ट्रेस की जिनकी पहली ही फिल्म में उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उसे कहते हैं कहो ना प्यार है, जी हाँ। और फिर उसके बाद आई गदर मूवी जिसमें उनका नाम था सकीना, जहाँ पे वो बनकर आई एक ऐसी एक्ट्रेस जो ब्यूटीफुल, बोल्ड और बहुत ही सुंदर पहचान लेकर आई। जी आज हम बात करने जा रहे हैं अमीषा पटेल की, जिनकी खूबसूरत गानों को लेकर आए हैं, उनकी ज़िंदगी को लेकर आए हैं, और बहुत सारी कहानियाँ कह सकते हैं कि बहुत सारी कहानियाँ मूवीज़ के पीछे होती हैं और बहुत सारी कहानियाँ ज़िंदगी में होती हैं। तो सभी एक एक करके सुनेंगे, तब तक सुनते हैं उनका एक प्यारा सा ऐसा गाना जो उनका मूवी में आया था, आप सबको याद है। इंजॉय कीजिए इस गानों को और साथ रहिए।
2: RM3 रेडियो।

0: पुराने नगमे।
1: 5:18 हो चुके हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज उस एक्ट्रेस की जिसका नाम है अमीषा पटेल। जी हाँ, उनका जन्म हुआ 9 जून 1975 यानी कि 9th जून 1975 को मुंबई में, जिनके पिता का नाम है अमित पटेल और उनकी माँ का नाम है आशा पटेल। मज़ेदार बात यह है कि अमीषा और नाम भी उनके माता पिता के नामों को ही मिलाकर बना है। अमित से लिया 2 नाम और अक्षर, और आशा से भी लिए 3 अक्षर, तो ये बन गया अमीषा। उनके छोटे भाई हैं अश्मित पटेल, जो वो भी बॉलीवुड के एक एक्टर हैं जिनको बहुत माना जाता है और बहुत ही टफ करके कहते हैं बिजनेसमैन है। और उन्होंने, उनकी जो सिस्टर है यानी कि अमीषा, उन्होंने टुफेट्स यूनिवर्सिटी यूएसए से क्या कहते हैं अपनी डिग्री ली और इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी। जब उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी तो उसके साथ साथ उन्होंने फाइनेंस की जॉब भी की। चलिए जी, गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर बातें करेंगे बहुत सारी उनकी ज़िंदगी की।
2: RM3 Radio.

0: 5:25 हो चुके हैं और अमीषा की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अमीषा पटेल. अमीषा का बॉलीवुड एंट्री में बहुत बड़ा कहते हैं कि एक इंटरेस्टिंग चैप्टर बना. एक दिन वो मॉडलिंग तो कर ही रही थी और थिएटर भी कर रही थी. एक दिन फैमिली लंच के दौरान फिल्म मेकर राकेश रोशन से उनकी मुलाकात हुई. अमीषा से बात हुई और उन्होंने देखा कि मुझे अपने बेटे को भी लॉन्च करना है, यानी कि ऋतिक रोशन को, और क्यों एक मूवी भी मेरे हाथ में है तो क्यों ना मैं अपने बेटे के साथ में अमीषा को सेट कर दूँ और दोनों एक एक्टर और एक्ट्रेस के रूप में सामने आए. और इसी दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, एकदम यंग हैं और दोनों फ्रेश फेस हैं और लोगों को पसंद आएगी. तो इसी दौरान 2000 में यानी कि 2000 में ऋतिक रोशन के साथ में अमीषा पटेल की एंट्री हुई और उनको मिली पहली मूवी अपनी और जो बनी सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर मूवी. अमीषा की जो ये बॉलीवुड का जो एंट्री थी जो कि बहुत ही शानदार आई, सभी लोगों ने उनको कहा कि ऐसी जोड़ी तो बहुत ही रेयर देखने को मिलती है. सबसे पहले एक बार ये जोड़ी इसी तरीके की डिम्पल कपाड़िया के साथ बनी थी ऋषि कपूर की और उसके बाद ऐसे ही उन्होंने सोचा कि काश ये इतनी अच्छी सक्सेसफुल जोड़ी बन जाए और बॉलीवुड को एक नया फेस मिले. तो बस मिल गए ये दोनों.
1: RM3 Radio.

0: 5:32 हुए हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं आज अमीषा पटेल की ज़िंदगी की कुछ अच्छे प्यारे से किस्से। तो जी हाँ, सोचिए दोस्तों, फिल्म पहली जो उनको मिली कहो ना प्यार मिली, और उसके बाद अगले ही साल उनको मिली गदर एक प्रेम कथा। सनी देओल बने तारा सिंह और अमीषा बनी सकीना। फिल्म की कहानी के साथ साथ ऊर्जा काले कावा और घर आजा परदेसी या मैं निकला गड्डी लेके जैसे गानों ने खूब चर्चे हुए। हर गली में यही गाने गाए जा रहे थे और सबने कहा कि इन दोनों की जो बॉन्डिंग है, जो इनकी केमिस्ट्री है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि क्यों ना इनको एक स्पेशल फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड दिया जाए। और सकीना को मिला एक बहुत ही प्यारा सा अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद ये गाना बन गया पूरे वर्ल्ड में नंबर वन। उसके बाद गदर टू भी आई और उसमें भी ये गाना बहुत ही खूबसूरती से गाया गया। और कहते हैं कि अमीषा पटेल की उस समय जो कहते हैं ना ट्रेन चल पड़ी और उनको मिलने लगी बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत मूवीज़। चलिए जी सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा गाना ऊर्जा काले कावा।
1: RM3 Radio.

0: सी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: सिमरन ने तुम्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि जहां मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती। जिस तरह राज के लिए फील करती हो, वैसे मैंने कभी भी समीर के लिए फील नहीं किया।
2: तुम्हें आशा से शादी करनी होगी और हर हालत में करनी होगी।
1: जिसे मैं प्यार करती हूँ आज वो किसी और का होने जा रहा है।
3: कोई मेरे दिल में है।
0: 26 सितंबर शनिवार को NBC4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कोई मेरे दिल में है, 2005 की मूवी प्रियांशु चैटर्जी और दिया मिर्जा पर फिल्माई गई कोई मेरे दिल में है।

0: पुराने नगमे।
1: 5:40 हो चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं आज अमीशा की जिंदगी के कुछ हसीन प्यारे से बहुत ही खूबसूरत किस्से। अमीशा ने सिर्फ ऋतिक रोशन और सनी देओल के साथ ही काम नहीं किया बल्कि अलग अलग स्टार्स के साथ काम किया। बॉबी देओल, अक्षय खन्ना के साथ हमराज, आफ्ताब शिवदेसानी के साथ किया यही प्यार है, अर्जुन राम के पाल के साथ वादा, अक्षय कुमार के साथ भूल भुलैया में भी दिखाई दी और हमराज में तो उन्होंने प्रिया का किरदार जो किया बहुत ही खूबसूरत किया। उसमें उनको फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेट किया गया और उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस किरदार को निभाया क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमराज मूवी एक पुराने समय में भी आई थी और वैसी सेम टू सेम इस हमराज को भी बनाया गया और उस ज़माने को लेके और आज को लेके इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी दोनों हमराज बहुत ही खूबसूरत मूवीज़ रही। तो हम बात कर रहे हैं हमराज मूवी की, तो क्यों ना ये भी गाना सुन लिया जाए।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:46 हो चुके हैं दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं अमीषा पटेल की। आप सब जानते ही होंगे या बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि 5 साल की उम्र से अमीषा ने भरतनाट्यम सीखना शुरू किया, जहां पर उन्होंने स्क्रीन पर कहो ना प्यार में यंग फ्रेश लुक दिया, वहीं पर हमराज मूवी में ग्लैमरस अंदाज और गदर में तो कहते हैं ट्रेडिशनल सकीना का रूप उनको बहुत भाया और लोगों ने भी इस चीज़ को बहुत पसंद किया। अमीषा पटेल की जो अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, पर उनके चर्चे बहुत ज़्यादा रहे विक्रम भट्ट के साथ और उन्होंने कई साल तक उनका रिलेशनशिप रहा आपस में, पर एक समय आया जहां पर ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई और उन्होंने एक बिजनेसमैन कनव पुरी के साथ में अभी उनका रिश्ता है और वो निभा रही हैं और बहुत ही खूबसूरती से उनकी ज़िंदगी चल रही है, बट उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है ये सभी जानते हैं। पर अमीषा जब भी सामने आती हैं तो कुछ अलग सा रूप लेकर आती हैं, चाहे उनके कॉस्ट्यूम को बात कर लो, चाहे उनकी लिपस्टिक का अंदाज कह लो, उनके आईलाइनर का। कई लोग बोलते हैं कि जैसे कि एक बोल्ड एक्ट्रेस हो या फ्रेश लुक के लिए हमेशा अमीषा पटेल को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो बहुत ही प्यारा एक गाना है उनकी मूवी का, क्या यही प्यार है का, सोनू निगम की आवाज में, जहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छा एक लुक दिया। तो एंजॉय करते हैं इस गाने को।

0: पुराने नगमे।
1: 5:53 हो चुके हैं दोस्तों, और हम बात कर रहे हैं अमीषा पटेल, और अमीषा पटेल के एक छोटे भाई हैं जिनका नाम है अश्मित पटेल, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं। कई बार आपने उनको टेलीविजन में भी देखा होगा। अश्मित आए थे इंतहा मूवी में, मर्डर में, नज़र में, और फाइट क्लब में, टॉस मूवी में, जहाँ पर रियलिटी शो में भी वो काम कर रहे थे और साथ साथ मूवीज़ में भी। बीच में थोड़े बहुत उनके बीच में, भाई बहनों के बीच में कुछ नोकझोंक हुई थी और जो कि बाहर आ गई थी बात पर, फिर भी थोड़े टाइम के बाद दोनों ने इस बात को पैचअप किया और इस बात को वहीं पर ख़त्म किया। और साथ में 2023 में 22 साल के बाद अमीषा एक बार फिर बनी सकीना। गदर 2 आई सनी देओल के साथ में, और सनी देओल फिर से बने तारा सिंह और अमीषा बनी सकीना, जहां पे उन्होंने कहते हैं ना ओल्ड रोल किया। एक मम्मी पापा बन चुके थे, जैसे आपने फर्स्ट मूवी में देखा था, और वो जो मूवी थी इतनी पसंद आई लोगों को कि फिल्म बनी कमर्शियल सक्सेसफुल। और कहते हैं कि इस जो ये जोड़ी है ये इतनी हिट हो गई इतने सालों के बाद भी आने के बाद, उसी नज़र से सब लोगों ने देखा तो उन्होंने यही कहा कि ये दोनों सुपरस्टार है। क्या बात है। तो अमीषा पटेल के इन खूबसूरत गानों के साथ हम आपसे विदा भी लेंगे, उसके बाद सुन पाएंगे आप विस्तार से समाचार। ये गाने हमारी प्यारी अमीषा की तरफ से।
2: RM3 Radio.

शाम के ठीक 6 बज रहे हैं, समाचार सुनिए। नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जोर देकर कहा कि शागस पर मॉरिशस की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान की मांग की और फ्रांसी मित्रता की भावना के तहत द ट्रॉमलिन विवाद को सुलझाने में सहयोग देने का भी आह्वान किया। बच्चों को प्रभावित करने वाली बुराइयों से निपटने के लिए फिनिक्स के रोटरी क्लब ने आज कटरबोन में राइस प्लस कार्यक्रम पायलट आधार पर शुरू किया। 3 साल का ये प्रोग्राम स्कूली माहौल में ड्रग्स की समस्या के समाधान के लिए रचनात्मकता का उपयोग करता है। भारत और लाइबेरिया ने न्यूयॉर्क में 25 देशों के साथ मिलकर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड सीफेयरर्स की शुरुआत की। ये पहल रणनीतिक समुद्री मार्गों पर जहाज़ों पर हो रहे हमलों के मद्देनज़र नाविकों की सुरक्षा, आपसी सहयोग और संयुक्त राष्ट्र के समक्ष समुद्री व्यापार के मुद्दे उठाने के लिए बनाई गई है। थाईलैंड की मौसम एजेंसी द्वारा आंधी तूफान का पूर्वानुमान जताने के बाद मूसलाधार बारिश के कारण बड़े पैमाने पर आई बाढ़ के चलते बैंकॉक को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। नमस्कार, मॉरिशस गणराज्य की शागस पर संप्रभुता बातचीत से परे हैं। विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कल रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से अपने संबोधन के दौरान इस बात पर जोर दिया। उन्होंने इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान का आह्वान किया। मॉरिशस के कूटनीतिक प्रमुख ने दोनों देशों के बीच मित्रता की भावना के तहत ट्रॉमलिन पर विवाद को सुलझाने के लिए फ्रांस से भी रचनात्मक तरीके से जुड़ने का आह्वान

0: आह्वान किया है, सुनिए।
1: I now give the floor to His Excellency Ramphul, Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade of Mauritius.
2: न्यूयॉर्क में मॉरिशन विदेश मंत्री ने अपने भाषण के अधिकतर भाग को शागस मामले के लिए समर्पित किया। मंत्री रितेश रामफल ने एक बार फिर से द्वीप समूह पर मॉरिशस की प्रभुसत्ता दोहराई।
3: मिस्टर प्रेसिडेंट, आई नाउ कम टू एन इश्यू व्हिच फॉर मॉरिशस इज नॉन निगोशिएबल।
2: विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कहा, हम एक ऐसे मामले पर बात कर रहे हैं जिसके लिए कोई समझौता बातचीत नहीं हो सकती। ये शागोस टापुओं पर हमारी प्रभुसत्ता से संबंधित है। शागोस अर्शपेलागो संबंधित समझौते पर मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम ने 2025 के मई महीने में हस्ताक्षर किए थे। ये राष्ट्र संघ न्यायिक संस्था पर बहुपक्षीय विश्वास का जीता जाता सबूत है कि विवाद का शांतिपूर्ण समझौता हो सकता है। साथ ही हमारे देश की डिकोलोनाइजेशन प्रक्रिया की समाप्ति और शागस मूल के मॉरिशन वासियों के अधिकारों का पुनः स्थापित किए जाने की बात भी शामिल है। ये विश्वास की बात है पड़ोसियों के बीच इलाके में, और ये भरोसा तब मजबूत होता है जब रूल ऑफ लॉ कानून शासन का सम्मान हो। राष्ट्रसंघ महासभा के सुझावों, लॉ ऑफ सी अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के फैसलों और ICJ सलाहकारी राय का पालन भी हो, शागस आर्किपेलागो पर आधिकारिक दायित्व है। हमें विश्वास है कि जिन राष्ट्रों ने न्यू पोस्ट वॉर लीगल ऑर्डर की नींव रखी वे फिर से वचनबद्ध होंगे और बिना देरी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह सम्मानित करने और इसका पालन करने के लिए अन्याय को सुधारेंगे। विदेश मंत्री ने राष्ट्र संघ सदन में एक अन्य टापू की प्रभुसत्ता का उल्लेख किया, थोमले टापू। उन्होंने कहा, थोमले टापू मॉरिशस गणराज्य का एक अभिन्न हिस्सा है। हमने निरंतर रूप से इस टापू पर मॉरिशन संप्रभुता बनाई रखी। एक बार फिर से फ्रांस से हमारे दोनों देशों के बीच व्याप्त मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक तरीके से थोमले टापू संबंधी विवाद को सुलझाने की मांग करते हैं।
3: Du règlement du différend relatif à l'île de Tromelin dans l'esprit d'amitié qui caractérise les relations entre nos deux pays.
2: इसके अलावा मंत्री रितेश रामफल ने नई वैश्विक स्थिरता कायम किए जाने की दिशा में सहयोग के माध्यम से प्राप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संकल्प पर भी जोर दिया।
0: न्यूयॉर्क में अपने भाषण के दौरान मंत्री रितेश रामफल ने जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ साथ पानी और नई तकनीकों तक पहुंच जैसी चुनौतियों का भी जिक्र किया। मॉरिशस के कूटनीतिक प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कई आह्वान भी किए, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संघर्षों, सुधार की समाप्ति और एक फिलिस्तीनी राज्य के गठन के पक्ष में। सुनिए,
4: विदेश मंत्री रितेश रामफल ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों पर बात की, खासकर समुद्र के बढ़ते जलस्तर से टापू देशों की सुरक्षा का मुद्दा।
3: The graduation of countries.
4: देशों खासकर विकासशील छोटे टापू राष्ट्रों की तरक्की सुनिश्चित करनी चाहिए, उचित फंडों से उनका समर्थन करना चाहिए। नाजुक स्थिति वाले देशों के लिए फंड प्राप्त करने के निकषों में मॉरिशस सुधार लाने की अपील करता है। मॉरिशस के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की भी अपील की, खासकर सुरक्षा परिषद में बेहतर प्रतिनिधित्व को लेकर।
3: मॉरिशस फुली सपोर्ट्स द कॉमन अफ्रीकन पोजीशन।
4: मॉरिशस अफ्रीका की साझा स्थिति का पूर्ण समर्थन करता है, जो सुरक्षा परिषद में 2 स्थायी और 5 अफ्रीकी अस्थायी सीटों से संबंधित हैं। मॉरिशस सुधार लाए गए सुरक्षा परिषद में 6 देशों के प्रतिनिधित्व की भी मांग करता है और भारत के लिए एक स्थायी सीट की मांग का समर्थन करता है। दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों के मद्देनजर मॉरिशस ने संयम बरतने की अपील की, क्योंकि व्यापार, आपूर्ति और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित हो रहे हैं। मॉरिशस जैसी छोटी उदार अर्थव्यवस्था के लिए, जो समुद्री व्यापार पर मार्गों पर बहुत निर्भर करता है, ये प्रभाव बहुत ज्यादा है। हम संयम, वार्ता और टिकाऊ कूटनीतिक हल की मांग करते हैं। मॉरिशस ने फलस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति अपना समर्थन दोहराया। मॉरिशस एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के लिए फलस्तीनियों के अधिकारों के हक में अपनी दीर्घावधि की स्थिति को पुष्ट करता है।

0: चाहे जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलम हो। उन्होंने अपने संबोधन का समापन इस विश्वास को दोहराते हुए किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास उसके सामने मौजूद नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता हो।
1: फोर मिलीटों प्रोग्रेसिस्ट ने शागोस के मुद्दे पर समाधान खोजने के लिए मॉरिशस, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप के गठन का प्रस्ताव रखा है। एफएमपी के नेता पोल बेरांजे ने इस शनिवार को एक प्रेस सम्मेलन लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शागोस पर हमारी संप्रभुता पवित्र है और उनका मानना है कि अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच हस्ताक्षरित समझौता एक मिसाल के रूप में काम कर सकता है।
2: एबेन में लगे फो मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के प्रेस सम्मेलन के दौरान मुख्य रूप से शागोस मामले पर चर्चा। 2025 में मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसका हवाला देते हुए पोल बेरांजे ने इस बात पर जोर दिया कि बरतानी वचन एवं सम्मान दांव पर है। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए विरोध के बाद मॉरिशस को ग्रैनलैंड उदाहरण से प्रेरित होना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति शुरुआत में डेनमार्क के इस इलाके में स्वायत्त इलाके पर प्रभुत्व चाहते थे, एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप की बदौलत स्थिति में सुधार लाया गया।
3: Un high-level working group pour étudier sur l'accord de défense de 1951 là, qui m'en est incapable d'améliorer du point de vue américain. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il finit arrivé à l'accord. Malgré qu'il trompe un petit peu de la souveraineté, mais finit arrivé à l'accord. Qui pas tous à la souveraineté de Groenland ni du Danemark.
2: इस तरह फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के लीडर ने एक वर्किंग ग्रुप कायम किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें शागोस मामले को लेकर मॉरिशन, बर्तानी और अमेरिकी प्रतिनिधि संगठित हों।
3: Nous dire si vous propose aux États-Unis et à la Grande-Bretagne une rencontre high level entre le ministre de Maurice de Grande-Bretagne et des États-Unis et mettre sur pied, comme dans le cas du Groenland, mettre sur pied un high level working group de tous les trois pays pour arriver à une solution comme dans le cas Groenland mais sans tous à nos souverainetés l'eau chagos.
2: दूसरी तरफ पोल बेरांजे का मानना है कि प्रधानमंत्री को लंदन दौरे के अंतर्गत बरतानी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बरतानी पक्ष को आभार भी प्रकट किया, जिसने मालदीव्स और शागोस के दावों को खत्म कर दिया।
1: पीएमएसडे ने आज सुबह पोटली में एक प्रेस सम्मेलन लगाया। जावी लुगजीवाल ने नेशनल क्राइम एजेंसी के गठन की परियोजना पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की। पीएमएसडे के नेता ने शागोस से संबंधित हालिया विकास क्रमों पर भी अपनी बात रखी।
0: पीएमएसडी के नेता जावी लुगजीवाल ने नेशनल क्राइम एजेंसी की स्थापना पर सवाल किया। उनका मानना है कि भावी एजेंसी मॉरिशस के लिए आवश्यक सुधारों की पूर्ति नहीं करती। उन्होंने अधिक पारदर्शिता की मांग की, खासकर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को अपनाते हुए। पीएमएसडी के नेता के अनुसार इस विधेयक को पारित करने से पहले इसमें और संशोधन किए जाने चाहिए।
4: Parce que quand on est dans transparence, quand on est dans accountability, quand on est clair, la lumière partout, il est difficile pour quelqu'un. Maintenant, directeur général de NCA, c'est un monsieur, c'est un madame qui peut venir là. Un bandimoun le plus puissant qui peut être dans l'île Maurice. C'est le premier ministre qui peut être prérogative nommée pour 4 ans, possiblement pour 8 ans, parce qu'il a un droit renouvelé. Il faut revoir sa copie et amener un projet de loi acceptable à toute la population.
0: इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शागोस का मुद्दा भी उठाया गया। उनके अनुसार इस मामले में कोई प्रगति नजर नहीं आ रही। पीएमएसडी के नेता ने यह भी घोषणा की कि सगाईतो जुवाल के जन्मदिन 9 अक्टूबर के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी।
1: बच्चों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से, बुराइयों से मुकाबला करने के लिए रचनात्मकता एक हथियार के रूप में, इसी उद्देश्य के साथ राइस प्लस कार्यक्रम आज सुबह फिनिक्स के रोटेरी क्लब द्वारा काटोबोन के हरिलाल चुगुमुनी सरकारी स्कूल में एक पायलट आधार पर शुरू किया गया। तीन

0: साल तक चलने वाला एक मापने योग्य प्रोग्राम जिसका उद्देश्य स्कूली माहौल में ड्रग्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल पोर्टली में यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष लॉर्ड डेविड न्यूबर्ग से मुलाकात की। ब्रिटिश कानून के एक महत्वपूर्ण शख्सियत लॉर्ड न्यूबर्ग चाहते हैं कि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मध्यस्थता के सेक्टर में अपनी अपील को मजबूत करे। वो एक भविष्य के मॉरिशस मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से अपने व्यापारिक विवादों को निपटाने के लिए मॉरिशस को चुनने के वास्ते अफ्रीकी कंपनियों को भी प्रोत्साहित कर रही है।
1: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट के पुराने अध्यक्ष लॉर्ड डेविड न्यूबर्ग के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत चली।
2: I had a very pleasant meeting. We discussed...
1: उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बैठक लगी। हमने कानून प्रिवी काउंसिल, जो कि देश के लिए अपील संस्था के अंतर्गत आती है, उस पर बात करने का मौका मिला। कई वर्षों के दौरान इसमें कार्य करने का भी अवसर मिला। इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री के डॉक्टर, वकील और राजनीतिज्ञ के कार्य पर भी चर्चा की। इस तरह के अनुभवों से जीवन असाधारण सा बन जाता है, काफी विशेष है। लॉर्ड न्यूबर्ग व्यावसायिक आर्बिट्रेशन चलाने के लिए इन दिनों मॉरिशस में है।
2: आई वुड लाइक टू एनकरेज मॉरिशस टू
1: अखंडता और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को लेकर देश की अच्छी छवि है। उन लोगों के लिए मॉरिशस आकर्षण का केंद्र है जो लोग आर्बिट्रेशन के माध्यम से अपने विवाद को सुलझाना चाहते हैं।
2: इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड लैक ऑफ करप्शन एंड अपील्स अल्टीमेटली एज आई से टू द प्रिवी काउंसिल इट शुड प्रूव अट्रैक्टिव फॉर पीपल टू लिटिगेट हियर एंड टू आर्बिट्रेट हियर।
1: ये संभावनाएं मॉरिशस को अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक नियमों के लिए केंद्र की तरह मॉरिशस की स्थिति अतिरिक्त रूप से मजबूत करने के सरकारी उद्देश्य से मेल खाती हैं।
0: विदेश स्तर पर जो सुर्खियों में हैं कुछ खबरें। बैंकॉक के पूरे इलाके जनमग्न हो गए। शहर की सरकार ने सालों की सबसे भारी बारिश के बाद थाईलैंड की राजधानी में बाढ़ आपदा की घोषणा कर दी। मूसलाधार वर्षा के कारण सड़कें और कारें डूब गई तथा हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। भारत और लाइबेरिया ने समुद्री परिवहन की सुरक्षा और नाविकों की रक्षा के लिए हाथ मिलाए हैं। न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने 25 देशों को शामिल करते हुए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी शिपिंग एंड सीफेयरर्स नामक एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की है। हाल ही में लाल सागर, ब्लैक सी और खाड़ी क्षेत्र जैसे रणनीतिक समुद्री मार्गों पर व्यापारिक जहाजों पर हुए घातक हमलों के मद्देनजर ये कदम उठाया गया। ये समूह राष्ट्र के समक्ष नाविकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार का मुद्दा उठाएगा तथा सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग और सूचना साझा करने की प्रक्रिया को मजबूत करेगा। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को सुनते हैं।
3: In recent months, the world has seen unacceptable attacks.
4: भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हाल के महीनों में दुनिया ने व्यापार जहाजों और समुद्री नाविकों पर अस्वीकार्य हमले देखे हैं। इन हमलों को कानूनी और नैतिक दोनों ही दृष्टियों से उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये हमले होर्मुज़ जलमार्ग और खाड़ी क्षेत्र से लेकर रेड सी और ब्लैक सी तक हुए हैं। हमारा मानना है कि ऐसी हिंसा और जानों के नुकसान का कोई औचित्य नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो इन हमलों को बंद होना चाहिए। ये पहल समुद्री नाविकों और वाणिज्यिक जहाजरानी उद्योग से जुड़े मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर अधिक ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। लगभग 20 लाख समुद्री नाविक दुनिया के वाणिज्यिक बेड़े का संचालन करते हैं। उन्हें अक्सर वास्तविक और रूपक दोनों अर्थों में उथल पुथल भरे हालात से गुजरना पड़ता है। इस समूह के सदस्य इस मुद्दे को उठाने और आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर बहुपक्षीय और बहुदेशीय मंचों पर प्रयास किए जाएंगे। इनमें संयुक्त राष्ट्र, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और आवश्यकता के अनुसार अन्य संस्थाएं शामिल होंगी। आज दुनिया संघर्षों और टकरावों से घिरी हुई है। ये परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बुनियादी जरूरतों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं, जिनमें खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त शामिल हैं।
0: के अंत में चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मस्करविंस के दक्षिण दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। आज रात को देश के पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर रह रहकर बरसात होगी, अन्य जगहों पर कल सवेरे धूप खिली रहेगी। कल दोपहर बाद देश के पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर रह रहकर बरसात हो सकती है, अन्य जगहों में बादल घिरे रहेंगे। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके इससे ज्यादा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहर उठेंगी, दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17, अधिकतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 6:06 पर, सूर्योदय 5:54 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजल, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: On MBC Play and MBC.mu.
0: कलमाए रूट बोलूमी बोलूमी 49 साल की 49 years old की उमा शंकर मंगर की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें विशाल के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थ कल बल्कि सोमवार 28 सितंबर को सुबह के 10 बजे उनकी माता ललिता मंगर के मकान बोलू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन ऑन मंडे एट 10 AM। गुदबा सैंका ट्रोबोन में 85 साल के 85 years old के जसमिन देव नक्चेदी वे पहले मॉरिशस टेलीकॉम में काम करते थे। उनके अर्थ कल रविवार 27 सितंबर को दिन के 1 बजे उनके बेटे दिनेश कुमार नक्चेदी के मकान कट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। मोसलमा ओतेलम फॉरेस्ट साइड में 84 साल के 84 years old के तानाजी लक्सिमो की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ कल सुबह के 9:30 ईस्वंती लक्सिमो उनकी पत्नी ईस्वंती लक्सिमो के मकान फॉरेस्ट साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। योंगटाउ रोड ग्रांबोआ में 54 साल के 54 years old के श्री अजय सिबारत की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें लोलो के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थ कल सुबह के 10:30 उन्हीं के मकान ग्रांबोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबोआ ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। शोक में रूबेन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: on MBC Play.

0: Continuous music. Music. RM3.
1: You're listening to RM3 Radio. Man.

0: Nisu. नमस्ते दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप जुड़े हैं अपने ही शो के साथ, नई सोच में, मेरे यानी पूनम के साथ। आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारी से छोटे से टॉपिक पे, एक बुरी मीटिंग से पूरा दिन क्यों खराब करें। आज ऑफिस में एक बहुत कॉमन सी बात होती है, कभी मीटिंग अच्छी नहीं जाती, या बॉस ने कुछ कह दिया, या प्रेजेंटेशन में छोटी सी गलती हो जाती है और बस हम सोचते रहते हैं कि उसी के बारे में पूरा दिन। लेकिन एक खराब मोमेंट हो, एक पूरा दिन खराब करने की परमिशन क्यों हम दें। चलिए इसी पर आज बात करेंगे। बहुत सारे गानों के साथ हम जुड़े हुए हैं आपके साथ नई सोच में। आराम से ड्राइव करें अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, या अगर घर पर हैं तो आराम से सुनते रहें। एंजॉय कीजिए इस प्रोग्राम को।
1: RM3 रेडियो

छः बजकर 43 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। हम नई सोच में यही बात कर रहे हैं कि एक बुरी मीटिंग से पूरा दिन क्यों खराब करें। बताइए ज़रा, कभी मीटिंग से बाहर निकले हों आपने खुद से कहा हो, अरे मैंने ये ऐसे क्यों कह दिया, मुझे तो ऐसे बोलना चाहिए था, और फिर से वही सीन

0: में बार बार आता है दोस्तों, चलता रहता है और हम कई बार वही चीज़ों को सोचते रहते हैं, बराबर सोचते रहते हैं, दूसरों के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, किसी से बोलते हैं बात मत करो मुझसे मैं डिस्टर्ब हूँ, या डिस्टर्ब कर देते हो या और हो जाते हो। तो हम तो कई बार कहते हैं कि कैसे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो सिर्फ मोमेंट्स के होते हैं, दूसरे को याद भी नहीं कई बार होता बहुत टाइम तक, पर जिसके साथ बीतती है वो उस बात को लेके कभी कई बार तो पूरा दिन खराब करते हैं, कई बार हफ्ते खराब करते हैं, कई बार महीने खराब करते हैं और कई बार सालों साल लग जाते हैं उस मोमेंट से निकलने के लिए। तो हम तो यही बोलेंगे गलतियां हैं, छोटी हैं, अगर आपको एहसास हो रहा होता है कि ये गलती हुई है तो फिर दोबारा मत कीजिए, पर उसको वहीं पर ठीक कीजिए।
1: RM3 Radio.

0: नई सोच। 6:48 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं नई सोच कार्यक्रम के साथ जो कि RM3 रेडियो मनोरंजन पर चलता है। और हम ऐसी हल्की फुल्की बातें करते हैं, हम ये तो नहीं कहते कि हम कोई लेक्चर देते हैं या कोई डायलॉग बोलते हैं, हम बस सिर्फ बातें करते हैं। अगर आपको भी उसके ऊपर कोई अपनी राय रखनी है या आपको अच्छा लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं वो आपको सही लग रही है गलत लग रही है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5250600 पर। और ये आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कभी हमारी गलती होती ही नहीं, कई बार हमारी गलती बहुत छोटी सी होती है पर हमारा जो बॉस होता है चाहे कोई जो भी उसको लुक आफ्टर कर रहा होता है, हो सकता है उसका मूड किसी और की वजह से ख़राब हो और वो रू खासा जवाब दे दे और हम उस बात को अपने ऊपर ले लेते हैं, उसी बात को लेकर बैठ जाते हैं और अच्छे काम पर भी ध्यान कैसे जाएगा, हमारा अच्छा काम जो होता है वो भी ख़राब होता चला जाता है। कभी कभी खुद से हम कहना भी बहुत ज़रूरी होता है कि ये चलो ठीक है, मोमेंट अच्छा नहीं रहा, बॉस ने कुछ कह दिया या कुछ गलत फहमी हो गई या, पर कई बार हम ऐसे कर देते हैं कि उस बात को बहुत लंबे तक खींचते चले जाते हैं और जब खींचते चले जाते हैं तो वहीं पर हमारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं और कई बार हम जॉब तक छोड़ देते हैं। तो हम इसी के साथ में आपको इतना ही कहेंगे, ज़िंदगी बहुत सुंदर है, इसको सीखिए और आगे बढ़िए।
1: RM3 Radio.

0: दोस्तों 6:55 हो चुके हैं और कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक बुरी मीटिंग से पूरा दिन क्यों खराब करें। तो दोस्तों, ऑफिस में हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, कभी काम अच्छा होगा, कभी काम में कोई गलती हो जाएगी। यही तो वर्किंग लाइफ होती है और हम कोई परफेक्ट नहीं होते, और उन सबको भी, बॉसेस को भी पता होता है कि ये ट्रेनी है या सीख रहे हैं, या कई बार जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं उनसे भी तो गलती होती है, और गलतियों से इंसान सीखता है, आगे बढ़ता है। और साथ में कहते हैं कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन जाए तो आपको सिंपल इतना ही करना है कि आपने 2 मिनट उठना है उस सीट से जहाँ पर अभी आप बैठे हुए हैं, और वहाँ पर जाके पानी पीना है, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करना है, थोड़ा सा इधर उधर देखना है, और वापस आके अपनी सीट पर फिर से बैठ के फिर से उस काम के ऊपर ध्यान देना है कि काश वो गलती ना हो जाए दोबारा से। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है, पर इससे आपका ना तो फ्यूचर डिसाइड होता है, ना इससे आपकी काबिलियत डिसाइड होती है। आप बहुत अच्छे कर रहे होते हैं तभी तो ऑफिस में सब ने आपको रखा होता है, नहीं तो क्यों आपको कोई रखेगा। और इसी से ही हम यही कहेंगे कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे सोच के मालिक हैं, बस ऐसे ही बढ़ते चले जाइए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कभी ऐसा हो जाए तो थोड़ी देर के बाद, आधे घंटा, 2 घंटा, या हो सकता है 1 दिन के बाद बॉस के साथ बैठ के पूछिएगा कि बॉस, आपने जो कहा था वो उसमें सच में मेरी गलती थी? और अगर वो फिर भी कहे हाँ आपकी गलती थी, तो उसको बिल्कुल मानिएगा और वो दोबारा गलती मत कीजिएगा। ये फैमिली के साथ भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एक दिन आप जब खुद बॉस बनेंगे, हो सकता है अभी आप काम कर रहे हो, पर जिस दिन आप खुद बॉस बनेंगे उस दिन आपको रियलाइज़ होगा कि जिसको आपने काम दिया है उसको काम आपको सही तरीके से ही वापस करना है। तो चलिए जी, नई सोच में आप सबका बस यही टाइम तक था, बट इसके बाद हम जुड़ेंगे दिलों की आवाज़ प्रोग्राम के साथ में। साथ दीजिएगा, इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल गाने को।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: नमस्ते दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 7:11 हो चुके हैं और अब एक बारी है दिन को थोड़ा पीछे छोड़कर शाम को अपने अंदाज में जीने की। आज कौन खुश है, कौन उदास है, उस सबको पीछे कीजिए और बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में दिलों की आवाज़ में, जहां पर बात होती है सिर्फ दिल की। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं व्हाट्सअप पे 5250600 पर, और अगर आपको कॉल करना है तो आप कर सकते हैं 4028070 पर। मैं आपके साथ ही हूँ यहाँ पर पूनम, और आप सबका स्वागत करती हूँ इस प्यारी प्यार भरी शाम के साथ। इंजॉय कीजिए इन प्यारे गानों को और लुत्फ उठाइए इन गानों का, क्योंकि ये पुराने गाने जब चलते हैं तो कहते हैं दिल भी हाय क्या गाने हैं।
0: दिलों की आवाज़, की आवाज़।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में मैंने रखा है मोहब्बत। क्या गाना था, मतलब एक मोहब्बत से भरा हुआ, और वो आवाज़ कहते हैं जो बॉलीवुड में आज तक ऐसी आवाज़ नहीं आई, पूरे वर्ल्ड में कहते हैं कि ऐसी जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ थी वैसी कोई नहीं बना पाया। कहते हैं कि ईश्वर का उनके ऊपर बहुत ही हाथ था, तो मैं तो यही कहूँगी कि सबको बहुत खुशी मिलती है उनके गाने सुनने से, या मुकेश जी के, रफ़ी साहब के, लता जी के, तो ये गाने तो आपके साथ साथ चलते रहेंगे। बट आपको हम यही कहेंगे, आप अपने मैसेजेस भेजते रहिए व्हाट्सएप पे 5250600 पर। अभी प्यारा सा फ़ोन कॉल आया फूलवंती जी का, जो कि बहुत ही प्यार से मेरा हालचाल पूछते हैं, और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ हमेशा आप खुश रहें मैम, और आप हमारे साथ जुड़ती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। बाबू अनंतवा जी का साथ मिल रहा है इस समय, और अपनी शॉप पे बैठ के वो ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, बट कह रहे हैं कि जब भी मैं जाता हूँ ये सैटरडे मेरे दिमाग में रहता है, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि सैटरडे को मिस ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पुराने गाने नए गाने सब एक तरह से चलते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आपका थैंक यू बाबू सर, आप हमेशा साथ रहते हैं, और आपने बताया कि आप ये गाना गा भी रहे थे, तो हम आपको थैंक यू बोलेंगे इस चीज़ का कि आप तो हमारे साथ हैं और आप पुराने गानों को बहुत पसंद करते हैं।

0: तो थैंक यू सो मच आपका. किरण पुरी जी साथ दे रहे हैं कनाडा से और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश लेके आए हैं और कह रहे हैं आपने मुझसे वादा किया था आने का तो मैं तो आ गया और आपके गाने भी आ गए. तो मैं तो कहूँगी थैंक यू सो मच, आप भी साथ दे रहे हैं, साथ ही रहिए. सूरज शर्मा जी साजिदा जी साथ दे रहे हैं और बेटे निशाल को बस यही कह रहे हैं कि पढ़ाई के दिन है, पढ़ाई कर लो और मैं तो गाने बजाता रहूँगा, सुनता रहूँगा, पर आपका जो ये टाइम है ये वापस नहीं आएगा. इन्जॉय कीजिए गानों को साथ में. आप सबको जो भी समय हमारे लिसनर्स हैं जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, आप सबको इतना ही कहेंगे. खाना खा रहे हैं तो खाइए, इन्जॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को.
1: दिलों की आवाज़.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: 7:33 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। और कह रहे हैं किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी आज मत हो

खुश हुआ जाए मेरा मन तो मैं तो ये कहती हूँ कि भाई जब लास्ट मंथ आता है और सैलरी का टाइम आता है ऐसे ही हमारे दिल में थोड़ा सा दुख दुख दुख दुख हो रहा होता है क्योंकि हमें स्पेंड करना होता है बहुत सारी मस्ती करनी होती है पर हम आपको इतना बोलें सारे पैसे बिल्स पे मत खर्च दीजिएगा अपने पास उतने ज़रूर रखिएगा वो सेपरेट अलग से निकाल के रखिएगा जिससे आप थोड़ी सी मस्ती कर सकें अपने हॉबी को आगे कंटिन्यू कर सकें कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत समय से खरीदनी है वो

0: हो, चाहे वो एक टीवी हो, जो आपका दिल करता है, एक पेन हो, एक ज्वेलरी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे 100 रुपीज़ की हो, जिससे भी आपका आपकी याद है कि आपने वो चीज़ खरीदनी है, वो ज़रूर खरीदिएगा। अगर फेशियल कराने जाना है, फेशियल कराइए। अगर आपको स्मार्ट कोई आपकी पसंद की कोई शर्ट है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, वो छोटी है चाहे बड़ी है, हम तो ज़रूर कहेंगे आप ज़रूर खरीदिएगा और थोड़ा सा इंजॉय कीजिएगा अपनी ज़िंदगी के लिए। ये ना हो सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए, ऑफिस के लिए, बॉसेस के लिए निकाल दें और एक बार आकर आप ओल्ड एज में ये कहें, अरे मैंने तो ये कुछ किया ही नहीं। ये सबसे दुखदायी बात होती है। तो एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गानों को, जो कि है भीगी रात मूवी से, मोहम्मद रफ़ी एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।
1: दिलों की आवाज़, दिलों की आवाज़।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: किरण परिसर जो कि कनाडा से हैं, बता रहे हैं कि जब मैं कॉलेज में था मुझे ये दिन बहुत याद थे और मुझे एहसास होता है कि कितना इम्पोर्टेंट टाइम था जो हम ऐसे ही निकाल देते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में बस कामों में बिजी हो जाते हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, और उस टाइम एहसास होता है कि काश वो दोस्त वापस मिल जाते। तो हम तो यही कहते हैं सभी को कि मतलब जब भी आप बैठे हों घर पे तो अपने दोस्तों को फ़ोन करो, मैसेज करो, पूछो कहाँ पे हैं और उनसे कुछ प्लानिंग करो। तो हम तो यही कहेंगे अभी संडे है, जो जो भी अपने अपनी जगह पे हैं वहाँ पे एक दूसरे के पास मिलने जाओ। और बहुत सारे दोस्त होते हैं बस यही सोचते रह जाते हैं उसने मुझे फ़ोन नहीं किया तो मैं क्यों करूँ, उसने मुझे नहीं कहा, इतने टाइम से बात नहीं की तो मैं क्यों करूँ। ऐसे करते करते तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे किसी ना किसी को करते रहिए और हाल चाल पूछते रहिए। बहुत

0: इम्पॉर्टेंट है। चलिए जी, बहुत ही प्यारा एक लिसनर का मैसेज आया है, बस कह रहे हैं कि मेरी पता नहीं है मेरी दोस्त क्यों इतनी नाराज़ हो जाती है, दिल तो कहता है इसको बहुत समझाऊं पर नहीं समझती है, एक प्यारा सा गाना लगा दो उनके लिए। तो क्यों नहीं लगाएंगे हम आपके लिए प्यारा सा गाना लगाएंगे। और एक हमारे दोस्त कह रहे हैं कि क्यों चेहरा छुपा रखा है आज, हम तो यही कहेंगे कभी कभी चेहरा छुपाना बहुत अच्छा होता है। इंजॉय कीजिए गानों को।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:56 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। और अभी हमारे जो दोस्त ने कहा कि भाई मान नहीं रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है अब तो मान ही गई होंगी, इतना प्यारा आपने गाना चलवाया है, कैसे नहीं मानेंगे। चलिए जी, हमारे साथ दे रही हैं इस समय बीना जी और पूरे लक्ष्मण फैमिली के लिए, और कह रही हैं प्लीज़ गाना ज़रूर चलाइएगा। बट थैंक यू सो मच, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है और आपको मैं हमेशा बोलती हूँ आपकी हंसी बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है। तो बस ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धानी जी साथ दे रहे हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश के साथ सभी लिसनर्स के लिए बहुत सारी गुड विशेस लेकर आए हैं, थैंक यू सो मच। ललिता जी साथ दे रही हैं और एक प्यारा सा दोस्ती मूवी, पुरानी मूवी जो थी उसके एक प्यारा सा गाना मांग रही हैं और कह रही हैं कि ये सभी को बहुत पसंद होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सच में ये मुझे ही पसंद है, तो दूसरों की बात क्या। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जब हमारे को एक जने को पसंद होता है, दूसरे को पसंद होता है, तो डेफिनेटली वो सभी को पसंद होता है। और दोस्ती मूवी थी इतनी प्यारी, एक इंसान चल नहीं सकता और दूसरा देख नहीं सकता, बहुत प्यारा गाना था। तो चलिए, पर उसके वो तो बाद में हम चलाएंगे, पर उसके पहले एक नागिन मूवी थी उसका, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने ये गाना गाया था। एंजॉय कीजिए इस गाने को।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज,
1: आठ बज के 6 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ में। और इस समय साथ दे रही है पूनम आपकी, और आपके मैसेजेस और आपके फ़ोन कॉल्स मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है जब जब किसी के गाने चलते हैं, उनकी पसंद के गाने, तो ज़ोर से आवाज़ आती है, अरे ये गाना मेरा है, ये गाना मेरा है, और एहसास हो जाता है कि हम भी चला रहे हैं और आप उतने ही उतारू होते हैं उन गानों को सुनने के लिए। तो क्यों ना हम इन गानों को सुने, साथ में एक वाइब बनाएं घर में। इस समय बहुत सारे लोग घर में होंगे, क्योंकि देखिए सैटरडे जो होंगे, जो बाहर इस समय जा रहे होंगे या कहीं पर ड्राइव करते हुए जा रहे होंगे, हो सकता है उन्हें पुराने गाने पसंद हो, पर बहुत सारे जने होते हैं जिनको नए गाने बहुत पसंद होते हैं। और हम तो यही कहते हैं भाई, पुराने गाने भी मिक्स कीजिए, नए गाने भी मिक्स कीजिए, और आपकी जो फरमाइशें होती हैं बहुत पुराने गानों की आती है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि सैटरडे आप जो घर में हैं, आपका दिन तो ज़रूर बनना चाहिए, चाहे रात के साथ ही सही। तो ये गाना बहुत ही पसंद का है, ये मेरी पसंद का है, मुझे लगा कि आप लोगों के लिए ये गाना चलाती हूँ, क्योंकि आपके गाने तो सब आपकी पसंद के चल ही रहे हैं। तो अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कीजिए 5250620 पर, और अगर आपको कॉल करने का दिल कर रहा है तो कर सकते हैं 4028070 पर। इंजॉय कीजिएगा, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
0: दिलों की आवाज़।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: आप सब जानते ही हैं कि आज है 26 सितंबर और ये खास दिन है स्पेशली किसी ऐसे बॉलीवुड लेजेंड का जिनका बर्थडे है आज। और आप सबको पता होगा एक ऐसे सदाबहार अभिनेता जिनकी फिल्में आप सभी को पता हैं और वो एक ऐसे क्लासिक एक्टर थे जिनको ब्लैक और वाइट पब्लिकली मना था। उन्हें कहा जाता था कि आपने ये कपड़े नहीं डालने क्योंकि वो इतने हैंडसम, इतने क्यूट, इतने क्या डैशिंग लगते थे उस ज़माने में। और उन्हें कहा जाता था, मुझे पता चल गया, आप सभी को पता चल गया उनका नाम, जी हाँ, देवानंद साहब, जो कि हमारे बीच में अब तो नहीं है पर फिर भी उन्होंने अपनी इतनी कला छोड़ के बिखेर के गए हैं। 88 ईयर्स तक भी वो एकदम जवान लगते थे और वो कहते थे कि मैं कभी ओल्ड नहीं होऊंगा, हो सकता है मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेरी डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मेरा जो काम है, जो कि मैं चाहे राइटिंग करता हूँ, डायरेक्शन करता हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, जो भी है, मैं हर एक्टर को बहुत क्लोजली देखता हूँ और चाहता हूँ कि हर कोई इतना अच्छा काम करे। बॉलीवुड के स्टार्टिंग हीरोज में से हैं वो और ऐसा ना नहीं हो सकता कि आज उनका बर्थडे हो और आज हम उनका गाना ना चलाएं। और साथ में ये है हमारे चंकी पांडे साहब का भी बर्थडे, जो कि सबसे बॉलीवुड में मशहूर बात कही जाती है कि वो सबसे कंजूस एक्टर हैं और जो कि उनकी कंजूसी का तो ये हाल है कि मतलब उन लोगों से कोई पैसे मांगता है तो वो कहते हैं कि भाई जो मर्जी करो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो पर उनके परिवार वाले यही कहते हैं कि वो बहुत ही खुले दिल के इंसान हैं, पर शायद हो सकता है उनका नेचर ऐसा बन गया हो, पर वो बहुत प्यार करते हैं सभी को और दिल लुटाते हैं कहते हैं, और हर किसी में पैसे नहीं देते पर कहते हैं हाँ मैं दिल लुटाने के लिए यहीं पर बैठा हूँ। और स्पेशली ये गाना है जो कि मुझे याद दिलाया इब्राहिम साहब ने, जो कि पोर्टलू से है, और कहते कि क्यों नहीं ये वाला गाना चला देते। तो मैंने बोला क्या हो सकता है, आप कहें और हम ना चलाएं, बिल्कुल नहीं हो सकता। साथ में इस समय जुड़ी हुई है हमारे मालिनी जी, डैरन, श्वेता, रवीश, प्रिशा और लवेशा फैमिली सभी रोशनवा से जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं ये गाना ज़रूर चलाइएगा, बिल्कुल चलाने जा रहे हैं। संध्या जी अपने पति विनोद जी के लिए गाना सुनाना चाहती हैं और उन्हें सिर्फ इतना कहना चाहती है, तुमसे प्यार है और बहुत जोरदार प्यार है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या बात है, ब्यूटीफुल मैसेज फॉर हस्बैंड। सेजल रायना और निर्वय के लिए ये गाना चलाएंगे हम, और साथ में हमारे बहुत सारे और लिसनर्स जुड़े हुए हैं, एक एक करके उनके भी नाम लिए जाएंगे। पर आपको सुनाते हैं ज्वेल थीफ मूवी का ये प्यारा सा गाना किशोर कुमार की आवाज़ में, इब्राहिम साहब आपके लिए।
2: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: 8:44 हो चुके हैं दोस्तों और आप स्टिल जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में। और मुझे एहसास है क्योंकि सभी के गाने जब चलते हैं एक एक करके कौन बंद करेगा रेडियो, यही तो रेडियो की खासियत होती है। आप घर के काम करते रहिए और बच्चों को देखते रहिए, अपने आप को देखते रहिए, घर की सफाई हो जाती है ऐसी, और साथ में कहते हैं कब्ज लग जाते हैं, खाना बन जाता है, खा लेते हैं और रेडियो एक कोने पर बस बजता रहता है जहाँ पर सिर्फ आपके गाने होते हैं।

0: और हमारी छोटी मोटी सी बातचीत होती है। तो चलिए जी, इस समय हमारे साथ दे रही हैं नंदा जी पाई से और ललिता जी और हमारे आत्माराम भाई और प्रकाशवंती जी साथ दे रही हैं बेल्जियम से। और इस समय वो कह रही हैं कि एक हमारे आत्माराम भाई हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर आज उनका बर्थडे है। और आप सब जानते हैं कि हमेशा ये मैसेज आता रहता है और हम आपको आत्माराम भाई को सिर्फ इतना ही बोलेंगे, आप एक उम्र में हैं हमें पता है, पर आपका आज ये स्पेशल डे है, इसको सेलिब्रेट कीजिएगा, हम आपके साथ हैं, आप इंजॉय कीजिए ज़िंदगी को और जल्दी से ठीक हो जाए ये, और सब आपको बहुत प्यार करते हैं। सुदेवी जी साथ दे रही हैं वाकवा से, दीदी सुनीता, देवीना, मलिंगा, कृषे, कृष्णी, प्रतिभा एंड राम रतन फैमिली के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। मोहित जी साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, बट मेरे पास गानों की लिस्ट तो अभी और भी बहुत सारी है, पर मैं कौन कौन से गाने चलाऊँ मुझे समझ नहीं आता, पर फिर भी जो गाने चला सकते हैं हम साथ दे रहे हैं आपका। इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल गाने को दिल चले मूवी से, एक बात मैं अपने दिल से कहूँ।
1: RM3 Radio.
2: एक बात मैं अपने दिल में लिए न जाने कब से फिरता हूँ।
3: क्या?
2: कि वो सारे प्रेम पत्र उस मोटी की बजाय अगर तुम मुझे लिखती तो कैसा होता?
3: मैं क्यों लिखूंगी?
2: तो ये सारे कार्ड्स,
3: वो तो
2: किसी को प्रेम पत्र लिखना चाहती थी?
3: नहीं नहीं, छोड़ो मेरा हाथ।
2: आज चोर पकड़ा गया और मैं हाथ छोड़ दूं?

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़।
1: 8:53 हो चुके हैं दोस्तों, अब बस आज के लिए इतना ही। आपके साथ गाने सुने, आपके साथ बातें की, आपके साथ इतना अच्छा लगा मैं बता नहीं सकती। बस सुनते सुनते ये गाने और कहाँ से शाम आ गई और शाम निकल के रात तक पहुँच चुके हैं। और ऐसे ही कहते हैं ना, जब शाम ख़त्म होती है और रात आ जाती है तो पता ही नहीं चलता कहाँ से ये टाइम निकल गया। तो हम तो इतना ही बस कहेंगे जाते जाते एक प्यारा सा गाना आप सबके लिए। यूँ ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, RM3 के साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ आपके साथ पूनम। शुभ रात्रि आप सभी को, गुड नाइट एवरीवन। अपना ख्याल रखिएगा और फिर अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय। RM3 रेडियो।

0: Continuous music. Music. RM3.
1: टाइम चेक, रात के 9 बज रहे हैं.
2: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: फिलिशा प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है. आपकी तवज्जो के लिए हम नहायत शुक्रगुजार हैं. अपनी मेज़बान अबिनाज जान अली को इजाज़त दे. अपना ख्याल रखें. शब बख़ैर. सुभानक अल्लाहुम व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक.

0: रेडियो मॉरिशियस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशियस।
0: रेडियो मॉरिशियस,
1: रेडियो मॉरिशियस।
2: भोजपुरी
1: तड़का
3: आज की रात रत्ना के संगे NBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
4: रात के 9:06 हो गल बा। रेडियो मॉरिशस पर आप सबको एक स्वागत बा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में। अभी से लेके रात के 11 बजे ले सब कोई के साथ देवत हैं। जहाँ कहूँ से भी साथ देवत हवा तू तो बस ऐसे प्यार से हमनी के संगे जुड़ल रहिए और ही मजेदार गुजराती भोजपुरी गीत। कहाँ गुजराती, हाँ हो भोजपुरी गीत तोहर खातिन लेके आल हैं और आप सब कोई के मनोरंजन करब जा। अभी से लेके 11 बजे ले तो जरूर हमनी के साथ देते रहिए जा और बढ़िया से बढ़िया भोजपुरी गीत सुने खातिर तू हमनी के टेलीफोने करे सुकबर 4028085 पर। जी हाँ 4028085 पर, जहाँ पर अपन पसंदीदा गीत के तू फरमाइश करे सकबर। और ये मिसाज विदा करे खोजा था हुआ था 5251700 पर हमनी के तू संपर्क करे सकब, मिसाज विदा करे सकब। और आज के कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया गीत के संगे सजावब जा। कहे के आज तो है सामदी के रात और जे सामदी के रात तोहर हिया परिवार आल होन या तू परिवार हिया गल हो तो जरूर हमनी के संगे जुड़ल रहियो और अपन पसंदीदा गीत के तू मांग करे सकब। तो चला आज के गीत के शुरुआत करब जा एगो बढ़िया गीत संगे। काहे के हई गीत एकदम हट के है और मजेदार बात तोहर से जरूर साझा करब कि हई जोन गीत है हमनी के गावे के मौका मिलल बा और हमनी के संगे बिल्कुल एगो ऐसन कलाकार जेकर आवाज बहुत ही मजेदार। तो चला राजा बंधु के आवाज में रखल हई गीत तोहरा सुनावब जा। आशा करब जा कि हई गीत तोहरा बहुत अच्छा लगी।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 2006 के बरिस और बिल्कुल सितंबर महीना के आखिरी शनिवार और हाई गीत रहल राजा बंधु के आवाज में। आशा करब जाके हाई गीत और अच्छा लगल और चला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बहुत ही मजेदार कार्यक्रम और हाईजा पर हमनी के ढेर कोई श्रोता सुनत हवन तो बस ऐसने प्यार से साथ देते रहिए जा। और जैसे कार्यक्रम शुरू होला तनी तड़का मारे के चुटकुला के तो चला आज के जोन पहला गीत हाई हा गायत्री जी के पसंद पे नुवल फॉन्स से वो हमनी के साथ देवत हवन उनकर बेटा हवन अजय मामी हवन कल्याणी मोहन जी हमेशा मेबग से साथ देते रहे लन भौजी हवन शकुंतला मोताइलोंग से और उनकर खास सखी हवन गीता बाई जे रहे लन रह नुवल फॉन्स से हाँ और साथ ही साथ सुनीता जी भी हमनी के संगे जुड़गल हवन गोब देने से तीन को बहिन विमला अमृता और वीना जी हमेशा साथ देवेलन बहुत ही प्यार से। तो चला आज के जो नगला गीत है लागी नहीं छूटे राम बहुत खुशी रहेलन सा है गीत सुने के। तो चला साथ ही साथ तलत महमूद और लता मंगेशकर के आवाज़ में रखा लेगो हिंदी फिल्म के गीत है लागी नहीं छूटे राम। और हमार चाची के तो कैसे बोलब हमार जो चाची चमेली है कौन दिन चचा के बोले अहो सुना था तोहरा हमार कौन आदत सबसे अच्छा लगेला सच्चे सच्चे बोलिया। तो चचा बोले अरे नाराज होवे के जोन तोहरा आदत है ना हाई हमने के बहुत अच्छा लगेला काहे के तू खिसिया के अपन नम्मा हिया चप चल जाला तो हई आदत का बोलब हमने के बहुत दिल छू जावेला हो का बोलब। तो चाची बोले हट हो हम तोहर से नहीं बतियाब

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे भोजपुरी के रंग और चला हाइजा पर हमनी के ढेर कोई साथ देवत हवन।
0: भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम और चला है जहाँ पर 9:17 हो गल बा बाय अबू हमनी के संगे जुड़ गल हवन संगे हवन उनकर बेगम आफे साथ देवत हवन असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी आपी और उनकर पत्नी और उनकर सब परिवार संगे जुड़ के हमनी के बोले गीता के जादर के आवाज में रखल माँ बाप के मोल हाई गीत उनकरा सुने के बहुत बहुत मन करा था तो चला आज उनकर दिल खुश कर अब जा हाइये गीत के संगे और हैजा पर हमनी के साथ देवत हवन बहुत प्यार से भाई माहेन बहुत बहुत धन्यवाद भाई माहेन साथ देते रहिए जा और ऐसे हमनी के संगे संगे जुड़ल रहिए संगे हैजा पर हवन राफिक मोहित ताहिया देने से तो चला बहुत मजेदार कार्यक्रम संगे तू भी हमनी के साथ देवत हवन तायाक बगल से आशा करब जा हौजा मौसम बहुत अच्छा बा और ये बुझाता जैसे गर्मी तो एकदम से जोर पकड़ ले बा तो चला ऐसा मौसम में बढ़िया बढ़िया गीत के संगे तनी मजेदार तड़का और हमर जो चाची चाचा के तो झगड़ा होते रहेला का बोलब चाची कौन दिन चाचा के ऐसन ऐसन तनी औबिते करके बोलत हवा ना सुना ना आई खिड़की आप तनी नवा पर्दा लगा द तो चाचा बोले काहे हो अभी तो लगैले रहली देसाम में तो अभी नवा पर्दा काहे मांगत हव बोले है जानत हव आई पर्दा ना तनी तनी हमेशा लौकेला और हाँ नवा पड़ोसी आल हवन ना तो हमनी के ताक झाँक करके बार बार हमनी के झाँक झाँक के देखेलन सा और नहीं अच्छा लगेला हमनी के हाई तनी नवा पर्दा दलवा दा हमर खातिन तो चाचा बोले अरे देख ले वेदा ओकरा नीमन से वो खुद ही अपन घर में नवा पर्दा लगा दे तू काहे चिंता करत हवर बुढ़िया

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:23 हो गए बा बिल्कुल अच्छे से ढेर कोई हमने के इतना प्यार से टेलीफोन पर बतिया था नहीं छोड़ा था हमने के बहुत प्यार से हमने के अच्छा लगा था बात करे के तो चला आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ब सा और ये अगला गीत जो है बहुत ही मजेदार गीत और हई गीत चलाओ अब जब मानती जी खातिर मानती जी के भैया जो हवन उनका जन्मदिन रहल काल सुख के दिन आनंद भैया के जन्मदिन के बहुत बहुत बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलब जा और खासकर उनका उनका तीन गो बहिन मानती अनंती और आरती के ओर से और खासकर दू गो बेटा रनीश और निवेश दू गो पतो हवन उर्वशी और अनुषा संगे हवन नाती पुता गिरिशा मितिशा हितांशु भव्य पुष्कल और सब परिवार देने से उनका बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद और संगे संगे हाइजा पर पों लो जैसे साथ देवत हवन छोटी उनका भैया आत्मा राम के जन्मदिन बा 80 बरिस के हो गल हवन चला तबीयत उतना अच्छा नहीं बा पर भगवान से हइए प्रार्थना करब जा कि तोरा अच्छा स्वस्थ मिली।

और ऊपर वाला तोहरा बहुत शक्ति दे तोर सब परिवार देने से तोहरा ढेर ढेर प्यार और कुआश बोलब जा और चला हाईजा पर दादी प्रभावती चाची लालिता और संगे संगे हरीश भैया खातीन भी हाई गीत मंगले हवन छोटी चला हाई गीत चलाओ अब जा बसन सुपोल के आवाज में रखल

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी रखा था और अभी अगला गीत जो है शांति जी खातिन चलाओ अब जा। अभी शांति जी हमने के साथ देवा था वंते आगूश देने से और दागोचे के सब मराठी परिवार खातिन गीत मंगले हवन और खासकर उनकर भगीना ओम जे अप्पा दागोचे रहेलन और उनकर भैया हवन बलराम जे लापुलिस के काम करेला। तो चला गिरीश रूपचंद के आवाज में रखल है अगला गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन और उनकर सब परिवार और जितना कोई सुना था वन जितना कोई खुशी हवन है गीत खातिन। और जाने ल हमर चाची जोन है चाची चमेली अभी बहुत सी गल हवन ऑनलाइन शॉपिंग करे तो एगो सेल्समैन टेलीफोने कलन बोले हाँ बहन जी तोहर पार्सल लेके आल हई। तो चाची बोले कहाँ हवा भैया सीमा में हवा। तो बोले जाने ल अम्मा जे कोई हम सीमा में रहब कि नहीं रहब तो बुझाता तोहर बूढ़ा हाली से सीमा में चलाई काहे के जितना शॉपिंग तू करत हवन महीना में 4-5-6 चक्कर लगावत हई तोहर तोहर गली के बुझाता तोहर बूढ़ा हाली से सीमा पे चलाई।

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला अगला गीत जो है कुमारी जी खातिन जी अभी दागो छे से ही हमनी के संगे जुड़ गल हवन और बहुत मजेदार गीत के साथ साथ आज अपन गुतनिया के जन्मदिन के बहुत बधाई देवत हवन राधा जी राधा उस्ताबिया जे वालेता रहेलन और अभी आज सब कोई परिवार हौजा गल हवन राधा जी के जन्मदिन मनावे खातिन उनकर बूढ़ा उनकर पति हवन गजराज बेटी हवन पूजा साथ हवन अजू और उनकर सब नाती पोता की ओर से और उस्ताबिया परिवार और खासकर उनकर गुतनी कुमारी जी की ओर से उनकरा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई। चला हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और ये अगला गीत जो है कुमारी जी तोहर खातिन है गीत के मांग कर ले हवन अभिमन्यु हरिपाल के आवाज में। तो चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और हमर चाची जाने ल कौन दिन अपन साफ सफाई करत रलन घर के और चाचा के ऐनक मिल गल ओकरा तो जैसे चाचा के ऐनक मिलल तो जैसे सफा करके चढ़ा देलक अपन आँख पे और हाली से चढ़ा के बोले कौन ची बोले बाप रे बाप भाई में तो हमनियों के गलती सब लौकता हब समझ ली हमर बूढ़ा जोन है काहे खाली हमर नुक्स निकाले लन सा काहे हमनी के गलती बोले लन सा काहे के ओकर ऐनक में तो जिस हमर हमर गलती वे लौकेला ये से तो अब बूढ़ा जब देखा तब हमर कंप्लेन करते रहे लन

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चल 9:41 हो गल बा और मजेदार कार्यक्रम संगे है जा पर चाची ललिता हमनी के साथ देवत हवाना सब कुशल परिवार संगे त्रियोले से और आज उनकर दामाद बाबू विकास के जन्मदिन बा और इस संगे हवन उनकर पत्नी आरती दूगो लयिका विशेष और विधि सासुमा हवन ललिता संगे हवन उनकर साढ़ू भाई अजय आशना रणधीर और नताशा नहीं साडू भाई नहीं हवन सार हवन यानी साला साहब तो चला संगे हवन उनका जितना भी नाती पोता हवन घर में सब कोई जितना कोई लेकवन हवन सब कोई उनका जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई देवत हवन साथ हवन सुदेवी जी ज्ञानी छोटी दादी प्रभावती भाई आत्माराम भैया हरीश सुखलाल मौसी माला राम जावन और चाची ललिता हमनी के बोले तनी लागी ना ही छूटे राम के गीतवा चला द लाले लाल होठवा हाँ ये गीत चलाओ अब जा नाजीरा खातीन जे हमनी के दागोचे से साथ देवत हवन तो चला जितना कोई खुशी हवन है गीत सुने के उनकर सब कोई खातीन चलाओ अब जा हाँ ये गीत और मजेदार गीत संगे का बोलब हमर चचा गजोधर उनकर जो संगतिया हवन ना दमोदर भैया कौन दिन भेटा गल तो ऐसे मुंह लटका के बैठल रहलन तो चचा बोले कौन ची होल भैया काहे तू ऐसा मुंह लटका के बैठल हवा फजीर से देखत है तोरा तो दमोदर भैया बोले अरे का बोली भैया हम तो बहुत देर से एगो चीज सोचत है नहीं समझ में आवत करी कि नहीं करी तो चचा दमोदर चचा गजोदर बोले हाँ तो बोल ना कौन ची करे के तोरा मन करता बोले चचा के बोला था सोचत है शादी करे के बोले अरे तो इतना काहे सोचत हवा कर डाल शादी बोले हाँ ये तो सोचा था कुंवारी छोकरी से करी कि फिर विधवा से तो चाचा बोले अरे कुंवारी से करिया दो तीन बरिस में तो वो अपने आप विधवा हो जाए हो

0: भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम और हाईजा पर फ्लिक ऑफ फ्लैग देने से हमनी के साथ देवा धवन अनीता जी उनकर बहिन हवन शोभा भी से साथ जब इल्लू पिताल में हवन और गीत मंगले हवन शारदा सिन्हा के आवाज में रखल हिंदी फिल्म मैंने प्यार किया से लेवल गए तो जरूर हाई गीतवा सुनब जा

प्रेयर का कार्यक्रम और ही चला अभी थोड़ा घड़ी में 10 बजे के बाद और अगला गीत जो ना बड़ की मसाला पिसेला कृष रिदोई की आवाज में रखल हाई गीत चलाओ अब जातो हर खातिन और हाई गीत खास मंगले हवन कल्याणी मोहन नेबर्ग से उसाद देवत हवन और साथ हवन उनकर खास दोस्त और साथ ही साथ सुनीता देवी दीन खातिन उनकर तीन को बेटी खातिन रिश्ता रोशनी और संगे संगे हवन बिंदु काली चंद खातिन और भगिनी हवन गायत्री और उनकर बेटा अजय जेनुअल फॉन्स से हमनी के हमेशा साथ देते रहेलन सुनते रहेलन और एमबीसी के सब टीम खातिन और जितना कोई सुनत हवन रात के काम करत हवन उन सब कोई खातिन थोड़ा घड़ी में चुटकुला के साथ आगे बढ़ जाओ

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

Yeah.

வருடைய அன்பர்களே, திருமால் பக்தர்களே,

भगत गोविंद नाम से।

தொடர்பு கொள்கின்றோம். அடுத்து வரும் பாடலை கேட்கலாம்.